नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 है और मैं हूँ आपके साथ आरजे लूसी, आपकी उद्घोषिका। अरुण एफएम के स्टूडियो से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का तारीख है 12 मई 2026। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं ढेरों जानकारी वर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए आज के पहली प्रसारण सभा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं, अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ठीक 6:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम दोनी पोलो भक्ति गीत।

6:40 को सुन पाएंगे आप कार्यक्रम सुबह सवेरे और ठीक उसी के बाद प्रसारित होगा आपातानी भाषा में समाचार। ठीक 7:15 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और 7:45 को प्रसारित होगा तागिन भाषा में समाचार। सात बजकर 40 मिनट को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार और ठीक 8 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ठीक इसी के बाद 8:40 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर और 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

लॉकडाउन बचकर 10 मिनट को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप और ठीक उसी के बाद 10 बजे प्रसारित होगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ठीक 10 बजकर 10 मिनट को प्रसारित होगा आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और ठीक इसी के बाद 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक इसी के बाद 11 बजकर 10 मिनट को आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी लहर सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के आरुण FM स्टूडियो पर जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 MHz पर।

11:30 को आप सुन पाएंगे वेस्टर्न मेलोडीज और ठीक उसी के बाद 12 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक 12:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गजल और 12:30 को प्रसारित होगा कार्यक्रम एक वारदात आज के मेहमान। ठीक 1 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और ठीक 1:10 को प्रसारित होगा हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s। तो दोस्तों ये था अब से लेकर दिन के 1 बजे तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। या विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत, जहां आपने सुना दोन्यी पोलो भक्ति गीत ताबा कुका एंड पार्टी की आवाज में, और साथ ही आपने सुना गालो भाषा में दोन्यी पोलो भक्ति गीत। दोस्तों, ये आकाशवाणी का ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz है। कुछ पलों में आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर लुचिर पोल लोरिगोला लोनी तारु गालो यार सोगो सिरग गालो मिंके नागो में मिलन जिर मिंके नागो में जिनगो मार्बम जिर दो नाहरलगन का ट्रिम्स मेडिकल लो अरुणाचल प्रदेश सोक पार्क्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल क्रोनेरी एंजियोप्लास्टी PTCA ऑपरेशन सी मृत्यु यारूब अलरूब रिलेन मेनलेन ला सक्सेस दो बरिग नाम लगाब ट्रिम्स ग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू भी खाईरूब कोई तू ओक सिगिम इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी लोक ऑपरेशन मृगतु ओक निसिगी कॉम्प्लेक्स ट्रिपल बेशल कोरोनरी आर्टरी एम नाम चिनाम बे नाम एम चिन गता बे ता नागे एम एम ला मेंकेन जिता दा ओक एंजियोप्लास्टी चिनाम सिम मोपुरपु नाम एम ट्रिम्स लो रियार दो ओक इजलो बे ट्रिम्स लो 1000 एम मे याने गो बे एंजियोप्लास्टी एम आलु ब्रिग गे बा ओक सिगी ओक स्टेट ग हेल्थ केयर सेक्टर लो गुदिन सिबा नाम एम कापा तापा मोदो एम ला खांडूबी सोशल मीडिया पोस्ट लो एल एन ला मेंकेन जितू ओक इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी टेक्नोलॉजी लोक ऑपरेशन रिविग नाम सिगी माजिब काइब मज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरालो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर एम बाकेन दूला लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जीरो कार्दोलोक श्री सिद्धेश्वर नाथ शिवालिंगम साइट लोमेरो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एम लोदुम्या का मिनिस्टर ऑफ कल्चरल अफेयर्स दसांगलुपुल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जारकेन गामलिन ओके कब कब गद्दे सोगो रलिग्ञातु सोगो गुजरात के सोमनाथ मंदिर लोक रिनाम में नाम गद्दम लाइव कातम ततम ज्ञातु इनक्यों के डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल अरुणाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के मेंबर हेंतो कारगाबु मेरो के बागो दूग का ओक डिस्ट्रिक्ट लो एडमिनिस्ट्रेटिव अगेरा नाम सिम आल्डो रिग मेंग से अबागा दम पारजुग नाम लगाब के बासिम दूग तु ओक इजग टेक्नोलॉजी ग अदिन गदिन सिबा दाकु सोगो चिन स्टेट सोक एडमिनिस्ट्रेटिव अगेरा नाम रिकेन रिपा गमाब रिनाम अबागा दम निर्मकार गाबु कबासोगो मेंकेन जितु ओक सिम अबासिम आल्डो ब्रिग मेंग नाम लगाब निदुम आउम ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गो स्टेट गवर्नमेंट ते मोलेन ग गेबा अमला कारगाब मेंकेन जिता तु तवांग डिस्ट्रिक्ट लो अदक अदक प्रोजेक्ट ओक आगेरा नाम रिलक मेन लग ग नाम ग अलब रिनाम रिमा एम उखा दारखा नाम लगाब डिप्टी कमिश्नर तवांग नाम ग्याल आंगमो बुमेरो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी का बायम दूग का सोगो प्रोजेक्ट रिलेन मेनलेन खुनाम अबागा दम डीसी बु इका दार का दूला नारू प्रोजेक्टम नियम लोक मोलेन गतो का अमला प्रोजेक्टम रिने मेन ने गादम डीसी

नमस्कार दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ आइए शुरुआत करते हैं हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे। आप सुन रहे हैं मुझे आरजे लूसी को, मैं हूँ आपकी आरजे साथी आरजे लूसी। और आज हम एक ऐसे हेल्थ इश्यू के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे आम समस्या बन गया है, जो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हिंदी में ऊंचा रक्तचाप कहते हैं। दोस्तों, इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर भी है और वो सालों तक बिना इलाज के जी लेते हैं। लेकिन इसका नुकसान शरीर के हर अंग पर असर डालता है। तो आइए आपको बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारे दिल का काम है खून को पूरे शरीर में पंप करना। जबकि दिल खून पंप करता है तो रक्त की नालियों पर एक दबाव पड़ता है। इस दबाव को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब ये प्रेशर नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब लगातार 140/90 mmHg या

सोने में दिक्कत होना, बेचैनी सी होना और दिल की धड़कन तेज होना। अगर आपको बार बार ये समस्या हो रही है तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए। और दोस्तों, अब हम बात ही कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में, तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज करें तो क्या हो सकता है वो आपको बता दूं। तो दोस्तों, इसके खतरे बहुत ही गंभीर है, जैसे कि दिल की बीमारी होना, वो है हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो जाना या उसे कहते हैं लकवा, और हो सकता है कि किडनी डैमेज हो जाए, आंखों में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अंधापन तक का रिस्क हो सकता है, और साथ ही डिमेंशिया या स्मृति शक्ति का कम हो जाना। इसलिए ऊंच रक्तचापा यानी हाई ब्लड प्रेशर को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं, सुनते हैं हमारा अगला गीत कार्यक्रम सुबह सवेरे में, जिसका नाम है गाता रहे मेरा दिल, जो आप सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे में, जहाँ हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के बारे में। तो दोस्तों आइए आपको बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर होने के पीछे के कई कारण हो सकते थे। अच्छा, मैंने तो आपको वो बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि रक्तचाप से आप बचाव कैसे करें। तो जैसे कि कारण है ज्यादातर नमक का सेवन, ज्यादा सॉल्ट इनटेक, ज्यादा तेल, घी और प्रोसेस्ड फूड खाना, शारीरिक मेहनत ना करना यानी उसे कहते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और साथ ही आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव होना, स्मोकिंग और अल्कोहल, और कभी कभी तो वंशानुगति के कारण भी होते हैं ये। तो दोस्तों आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर से बचाव करना है तो सही आहार लेना है। सबसे पहले तो आपको नमक कम करें, ताज़ा सब्जी खाएं, फल खाएं, होल ग्रेन्स खाएं और जंक फूड और तेलिए खाने से बचें। दूसरा है नियमित व्यायाम। हर दिन कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज या आप सुबह उठकर योगा जरूर करें। तीसरा है अगर आपने अपना स्ट्रेस कम किया, जैसे कि आप योगा का उपयोग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान और योग ये बहुत ही मददगार है। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी, ये दोनों ब्लड प्रेशर को और भी खराब करते हैं। और साथ ही आपको एक बीपी मॉनिटरिंग मशीन ले लेनी चाहिए, तो हर महीने अपना बीपी आप खुद चेक कर सकते हैं, खासकर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ये ब्लड प्रेशर की ये जो बीमारी है, अगर ये पास ऑन होती है तो आपको जरूर एक मशीन लेके रखनी चाहिए, ताकि आप बार बार अस्पताल ना जा सके, खुद ही घर के कंफर्ट में आप ब्लड प्रेशर चेक कर सके। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि अगर डॉक्टर ने दवाई दी है तो उसका पालन बिल्कुल सही तरीके से करनी चाहिए। बीपी की दवाई को बिना सलाह के कभी खाना बंद ना करें। कुछ घरेलू लाइफस्टाइल टिप्स भी दे देती हूँ आपको, अगर हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए, अगर आप भी हाई बीपी के पेशेंट हो तो सिंपल टिप्स शायद आपके बहुत काम आ जाए। सुबह उठकर 5 मिनट आपको गहरी सांस यानी डीप ब्रीदिंग लेनी चाहिए। आपको अपने खाने में ऐड करना होगा तुलसी, लहसुन और मेथी का सेवन, ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है। रोजाना पानी पर पूरी ध्यान दीजिए, यानी डिहाइड्रेशन से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और सबसे जरूरी बात है आपका नींद सुकून से कंप्लीट होना चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। रात को कम से कम 60 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। आप 4 या 5 घंटे की नींद पे प्लीज फंक्शन मत कीजिए, क्योंकि स्लीप बहुत ही जरूरी है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मददगार होते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जो खामोशी से बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, इस बीमारी को कहते हैं द साइलेंट किलर। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें, सही तरीके से खाना खाएं, एक्सरसाइज भी करें और

0: और स्ट्रेस और एंजाइटी से बचे तो इसे आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। इसी संदेश के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले हफ्ते सुबह सवेरे में अगले दिन हम फिर मिलेंगे नए हेल्थ के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लूसी। और चलिए, अगले कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आपातानी भाषा में समाचार।

0: छोत्र बाखी बिला मतले हो सकापुगोपा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कोनसांग हो का दुन डॉक्टर बी रतन सकापुगोपा अन्यरोमी अनु उरोपा मोदल योग असेंबिला मुबिला मत सेंटर फॉर आर्ट साइंस हिमालयन स्टडीज ला नेशनल सेंटर फॉर पोलर्स एंड ओशन रिसर्च एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस लोका अतंग फोंग मुला रोंग एफा कोलाबोरेशन मुब दोला मोलो रोंगो कुन कारगी ग्लेशियर एक्सपेडिशन से ला तपि पेमे मे काते ला का क्लाइमेट चेंजिंग मे कोलो एक्सपेडिशन मुने मे मागो चाबु बासिन हला तवांग डिस्ट्रिक्ट का दोको सो मोल चासिला अनु आयापा आइसला मुतला लुदो सका एक्सपेडिशन सो होगा पुतुपुको दुको दाको होल लाइक सन ड्रीमी मोलो दाता फा कलेक मला मुतला सिमे दुरदारु हो नतंपना क्लाइमेट सो एपेकाला मोदो ने हेमी मोल काबिला मबिला मुते डिस्ट्रिक्ट पुलिस लोअर सेवन श्रीनी गलो वेलफेयर सोसाइटी जीरो यूनिट सो का दुनिया ने मुबासला वॉलंटरी ब्लड डोनेशन आको बिला ऑर्गेनाइज मुग बिला मत बुयो मोलो से का ब्लड डोनेशन आई बिला का मुनमी ब्लड सेंटर ज्ञाति तका जनरल जनरल हॉस्पिटल जीरो हो बिला मत से का प्रोग्राम से मोलो पान अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में गलो वेलफेयर सोसाइटी जीरो यूनिट सोला मोलो का हालुगरा पाका प्रेसिडेंट पाका दुका कुला मन बो लेट डॉक्टर मिंगे लोयमी हेम्बा गैपा कुला ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज मुग बिला मत फकीर वासर दाकीर बासर लेपारादा डिस्ट्रिक्ट सोका अंडर 42 केजी जूनियर निम ताइकोंडू कोरग्यू कैटेगरी होक लका खेलला मन गोल्ड मेडल पाइला पास बाला मत लालू दो कोलो मोलो वांगदी इंडोर स्टेडियम रूपा होका चैंपियनशिप खेंकासला का मुको सो के लालू कोला मुदो सरो का पुलोक सनहम कने
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आपातानी भाषा में समाचार। आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों वक्त है आपको ले जाने का हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। उससे पहले लेकिन सुन लेते हैं ये गीत जो है एक टाइगर जिंदा फिल्म से दिल दिया गल्ला।
2: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। और इसी दो बेहतरीन गीत के साथ आइए आपको बता दूं, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे लूसी। और आज की इस खूबसूरत सुबह के साथ बाहर सूरज धीरे धीरे आसमान पर अपनी रोशनी बिखेर रहा है, चाय की प्याली से उठती हुई भाप एक अलग ही सुकून दे रही है। और इसी सुकून के साथ हम लेकर आए हैं कुछ खास बातें आज के बारे में। हर दिन कैलेंडर में सिर्फ एक तारीख ही नहीं होती, कुछ दिन अपने अंदर इतना इतिहास, प्रेरणा और यादें समेटे होते हैं। और 12 मई भी उन्हीं खास दिनों में से एक है। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर की। हर साल 12 मई को पूरी दुनिया इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में मनाती है। ये दिन मॉडर्न नर्सिंग की जननी कहानी के जाने वाले फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सिर्फ एक नर्स के रूप में ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि सेवा और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। क्रिमियन वार के दौरान जब घायल सैनिक अंधेरे और दर्द में पड़े रहते थे, तब फ्लोरेंस ने एक लैंप लेकर वो उनके पास जाती थी, इसीलिए उन्हें द लेडी विद द लैंप भी कहा गया। आज भी जब हम हॉस्पिटल्स में नर्सेस को देखते हैं तो समझ आता है कि उनका काम कितना कठिन और महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर्स इलाज करते हैं, लेकिन नर्स हर पल मरीज के साथ खड़ी रहती है। उनकी मुस्कान, उनकी देखभाल और उनका हौसला कई लोगों के लिए दवा से कम नहीं होता। कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के समय पूरी दुनिया ने नर्सेस की असली मेहनत और बलिदान को देखा। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, तब नर्सेस और डॉक्टर्स दिन रात अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे थे। कई बार बिना अपने परिवार से मिले हुए उन्होंने फिर भी अपना फर्ज निभाया। इस खास दिन पर हम सभी नर्सेस को दिल से नमन करते हैं। अगर आपके घर में कोई दोस्त या तो कोई दोस्त हो सर्कल

अगर वो नर्स है तो उन्हें एक प्यारा सा थैंक यू जरूर कहिए। कभी कभी एक छोटा सा शब्द भी किसी के दिन को रोशन कर देता है। दोस्तों बात करते हैं कि हमारे देश में 12 मई को हेल्थ सेक्टर और सेवा के संदर्भ में खास रूप से याद किया जाता है। आज के दिन 12 मई को भारत में नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स को देश के साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है। हमारे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स से लेकर छोटे छोटे गांव के हेल्थ सेंटर्स तक नर्सेस हर जगह लोगों की जिंदगी बचाने में अपने योगदान देते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो या मेघालय हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, हर जगह हेल्थ केयर वर्कर्स लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनते हैं। इसी दिन कई जगहों पर अवेयरनेस प्रोग्राम, सेमिनार्स और हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी छात्र को हेल्थ केयर प्रोफेशनल का इम्पोर्टेंस समझाया जाता है। और दोस्तों एक और बात, आज के युवाओं के लिए नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं बल्कि एक नोबल सर्विस है। इस फील्ड में डेडिकेशन और पेशेंट भी बहुत जरूरत होती है। किसी दुखी इंसान को संभालना और उनके दर्द में उनका सहारा बनना, ये कम सच में बहुत ही बड़ा काम है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा कार्यक्रम का अगला गीत।

0: Gamanga, rorek birik sula, rigenye kubala, mepalen doku. Lower Subansiri District Police ngala, Galo Welfare Society Zero Unit ngalakin guba, ribam dokula, Zero lo, Gyatitaka General Hospital lo, Blood lo, Blood Center lo, Blood Donation Camp guni, ribam gaganye kubala, mepalen doku. Sumpan Anachal Voluntary Blood Donation Program ke aralok ke Galo Welfare Society Zero Unit lo kelo Presiden Badis lo kuna sin kuna Dr. Mige Loi ke lekannya na date anniversary nga menggap dokula sobam kuna nga kela mempalen doku. Wangdi Indoor Stadium Rupa lo Kyorogi Pimel Taekwondo ngarik sukulo 42 kg junior female taekwondo kyogi category lo Laparada district lo Dagir Basar gold medal go yalen fakula palen doko sogama som Basar ge MLA Nyabidini dirchini me palen jlakula redoko sru ge tagin gam yuning betam sangka herbo.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार. तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर. दोस्तों आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर. अगला कार्यक्रम पेश है सदाबहार, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये बेहतरीन गीत लता मंगेशकर की आवाज में. इस गीत का नाम है हवा में उड़ता जाए और इस सेगमेंट में आप सुनेंगे 60s के गाने.

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे डूसी। लेकर आई हूँ आज के मौसम का अपडेट। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों पर तैरते बादल और चाय के गर्म प्याले के साथ चलिए जानते हैं आज 12 मई के मौसम ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में। तो दोस्तों, आज का तापमान 29 डिग्री से लेके 29 डिग्री तक होगा। ईटानगर का मौसम काफी सुहाना रहने वाला है। दिन भर आसमान में हल्की बादली और धूप का आना जाना बना रहेगा। कुछ इलाकों में दोपहर या शाम के वक्त हल्की बारिश या छोटी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि रात का तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सुबह और शाम का समय हल्का ठंडा और प्लेजेंट वेदर महसूस होगा, इसलिए अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं या आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो एक छाता या लाइट रेनकोट साथ रख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट का मौसम कभी कभी बिना बताए, बिना नॉक किए मेहमान बनकर आ जाता है। नाहरलगन और आसपास के इलाकों में भी आज ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। दिन में हल्की गर्मी तो होगी, लेकिन बादल और हवा उसे बैलेंस कर देगा। शाम तक आइसोलेटेड रेन शावर्स की संभावना बनी हुई है। ड्राइवर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक छोटी सी सलाह है, अगर बारिश हो तो रास्ता कीचड़ के कारण स्लिपरी हो सकता है, इसलिए सेफ ड्राइविंग जरूर करें और अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन का मजा लेते हुए अपना सफर एंजॉय कीजिए। अरुणाचल के पहाड़ी इलाकों जैसे कि तवांग, बोमदिला यानी वेस्ट कामेंग के डिस्ट्रिक्ट्स में मौसम काफी ठंडा और क्लाउडी रहने की संभावना है। कुछ हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स में हल्की बारिश और फॉग देखने को मिल सकती है। वहां तापमान नीचे गिरकर 10 से 15 यानी 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकती है। यात्रा पर निकले लोगों को वेदर अपडेट्स रेगुलरली जरूर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्री मानसून सीजन में कभी भी लैंडस्लाइड आ जाए या लो विजिबिलिटी यानी फॉग के कारण आपको ड्राइव करने में भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हमेशा वेदर अपडेट्स चेक कीजिए। पासीघाट और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में मौसम रिलेटिवली थोड़ा गर्म रहने वाला है। दिन में धूप के साथ ह्यूमिडिटी महसूस होगी, लेकिन शाम तक हल्का सा क्लाउड कवर और बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। टेम्परेचर करीब 28 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पासीघाट के और ईस्ट सियांग के इलाकों में। अब बात करते हैं जीरो वैली और लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट के तापमान के बारे में। जीरो वैली में सुबह का मौसम काफी रिफ्रेशिंग रहने वाला है। हरियाली है, ठंडी हवा का कॉम्बिनेशन एकदम पोस्ट कार्ड जैसा एहसास देगा। दोपहर के बाद हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन ओवरऑल तापमान काफी प्लेजेंट रहने की उम्मीद है। दोस्तों, मई का महीना नॉर्थ ईस्ट में प्री मानसून सीजन का समय होता है। इसी दौरान अचानक बारिश आ सकती है, थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं और तेज हवाएं आम बात है, इसलिए ट्रैवल करते वक्त वेदर अपडेट चेक करते रहिए। हिली रोड्स पर केयरफुली आप ड्राइव कीजिए। बारिश के दौरान ओपन एरियाज में रुकने से बचिए और हाइड्रेटेड रहना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत जो है दोस्त फिल्म से, और इस गीत का नाम है चाहूंगा मैं तुझे।

शुदा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदा बहार। जाने से पहले एक छोटी सी बात है दोस्तों, अरुणाचल का मौसम और जिंदगी दोनों एक जैसा होता है। कभी धूप से बारिश और बारिश से रेनबो बन जाता है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए साथ अपने साथ अम्ब्रेला रखिए, थोड़ी सी मुस्कान भी, क्योंकि अगर आसमान मूड चेंज करे तो आपका मूड स्टेबल रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार दोस्तों, और याद रखिए, क्लाउड्स आए, ट्रैफिक जैम, रेडियो का वॉल्यूम।

0: कभी मत करिए। दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा

0: आसपास शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
7: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
8: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के

0: और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिनम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजी करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
3: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर

0: ลีกับมันซีมลาดาอัมยอยากลาดบันดันฮัจันกับรีดิโอเสร็จจุงกีนาดูมันสเต็ปกิลาสดังยากสงีกับจุงกีริงกัดวิกิโปรแกรมบะบวนจัดบะกับรีดิโอกับตรวาKawan rakyat ke jingin jana mensim, bagi para beriu naman laki gendong jangka pertai. Ke jing sengap radio ke teiru ya ke perkat perdan, ban jingi ha ke jing medur ya ke ee ke bang yuk asno, wat lada ngim lapat ban yuk ii. Tak hadu kini kisni ke radio ke...
1: Shota abhi aap sun rahe the, Delhi ki Akash Vani Kendra se, समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं हमारा कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
2: माय इको cuz इट्स गॉट मोर पावर
3: एंड इट आल्सो कम्स विद ऑल न्यू सेफ्टी फीचर्स।
4: वी लव आवर इको cuz वी कैन ब्रिंग
2: We love our eco because
3: it's made every journey special.
5: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
1: Namaskar, dosto. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर और मैं हूं आपके रेडियो होस्ट और दोस्त और आज का हमारा विषय उन हजारों युवाओं के नाम है जो सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। चाहे आप नीट एग्जाम देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हो या किसी और कॉम्पिटिशन के सफर पर चल रहे हो तो ये प्रोग्राम खास आपके लिए है। दोस्तों जिंदगी का सफर कभी सीधा हाईवे नहीं होता, कभी स्टीप हिल रोड होता है, कभी फॉग होती है और कभी बारिश, लेकिन जो रुकता नहीं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लाने के लिए होती है, लेकिन असल में एजुकेशन सिर्फ किताब के पन्ने या एग्जाम हॉल तक सीमित नहीं होते। एजुकेशन एक ऐसी रोशनी है जो इंसान को सोचने का तरीका देती है। पढ़ाई हमें सिर्फ नौकरी ही नहीं देती, पढ़ाई हमें कॉन्फिडेंस देती है, डिसीशन लेने की समझ देती है और दुनिया को देखने का नजरिया देती है। एक पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो अपने परिवार, अपने गांव और कभी कभी पूरे समाज का फ्यूचर बदल देता है। आज अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट के युवा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर और साइंटिस्ट बनकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं और शायद इस वक्त रेडियो सुनने वालों में से कोई एक फ्यूचर आईएएस हो जाए, कोई डॉक्टर हो या कोई टीचर या जो कल हजारों बच्चों की जिंदगी रोशन करेगा। दोस्तों जो छात्र नीट एग्जाम देकर आए हैं उनके दिल में इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे कि पेपर कैसा गया, रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं। और सच कहूं तो ये टेंशन बिल्कुल नॉर्मल है, एग्जाम के बाद हर छात्र ओवरथिंक करता है, लेकिन याद रखिए एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता। अगर रिजल्ट अच्छा जाए तो बहुत ही बढ़िया, और अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना आए तब भी जिंदगी वही खत्म नहीं हो जाती। हर सफल इंसान के पीछे फेलियर्स को का एक पूरा कलेक्शन होता है। डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ मार्क्स से ही नहीं, पेशेंस और डेडिकेशन से पूरा होता है। आज जो छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं वही कल आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। कभी कभी जिंदगी हमें डिले देती है, डिनाइल नहीं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जो है फिल्म पाठशाला से, और ये डेडिकेटेड है उन सारे क्लास 12 के बच्चों को जिन्होंने अभी नीट देकर वो एग्जाम की अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। और अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो ये गीत शायद आपको कुछ एक दो मिनट का सुकून देगा।

दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ आइए वापस शुरुआत करते हैं हमारी आज की सेगमेंट हेलो ईटानगर पे, जब हम बात कर रहे थे छात्रों के बारे में और उनके एग्जाम टेंशन के बारे में। अब बात उन स्टूडेंट्स की है जो स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों सिविल सर्विसेज का सफर मैराथन जैसा होता है, इसमें स्पीड से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग आपसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, किसी की जॉब लग जाती है, कोई सेटल हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है और आप अभी भी बुक्स और नोट्स के बीच बैठे होते हैं। उस वक्त दिल टूटने लगता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, लेकिन वही समय होता है जब आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना पड़ता है। याद रखिए, बैम्बू की ट्री पहले कई सालों तक जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करता है। बाहर से लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन एक दिन वही बैम्बू अचानक से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है और वो कभी रुकता नहीं। आपकी मेहनत भी वैसे ही है। आज शायद रिजल्ट्स नजर ना आए, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ही स्ट्रांग बन रहे हैं। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का जमाना तो है, किसी का आप देखते हैं कि उसकी जॉब लग गई हो तो सब सक्सेस स्टोरी के बारे में

बात कर रही हैं, किसी की अचीवमेंट के बारे में बात कर रही हैं और हर चीज स्क्रीन पर चमकती रहती है और फिर हम खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या मैं पीछे रह गया? क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे सारे दोस्त आगे निकल गए। लेकिन ये एक बात याद रखिए, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी का सनराइज सुबह के 5 बजे होता है, किसी का 6 बजे, किसी के 8 बजे, 9 बजे, वैसा ही। लेकिन सूरज दोनों का तो उगता है। आपको किसी और की स्पीड से नहीं, अपने डायरेक्शन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही है। और ये बात पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। आप सबको बता दूं कि हर बच्चा अलग होता है, हर छात्र का प्रेशर और स्ट्रगल भी अलग होता है। एक दो बार स्टूडेंट्स को लेक्चर से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। एक प्यार सी बात, तुम कर सकते हो, ये सेंटेंस किसी भी बच्चे को टूटने से बचा सकती है। मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी एक लंबी टनल जैसी लगती है, जैसे अंधेरा ही अंधेरा। लगता है कि रोशनी शायद कभी आएगी ही नहीं, लेकिन सच तो ये है, अगर आप चलना नहीं छोड़ते हो तो एक दिन रोशनी जरूर मिलती है। आज की मेहनत शायद आपको काफी बोरिंग लगे, नोट्स, रिविजन, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, सब एंडलेस साइकिल लग रहा होगा, लेकिन मुझे बिलीव कीजिए, फ्यूचर वाला आप आज वाले को आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे। एक दिन आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी किसी और को सुना रहे होंगे और तब आपको शायद याद आएगा कि कैसे आपने डिफिकल्ट डेज को क्रॉस किया था। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गीत, जो है आरक्षण फिल्म से, और इस गीत का नाम है अच्छा लगता है।

दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे कार्यक्रम हेलो ईटानगर में, जहां मैं बात कर रही थी एग्जाम स्पेशल के बारे में। आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं। एक छात्र था जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हो रहा था। हर बार रिजल्ट देकर वो उदास हो जाता। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक छोटा सा दिया जला कर दिया और कहा, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक छोटी रोशनी उसे तोड़ देती है। उस छात्र ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो इम्प्रूव करता गया और कुछ सालों बाद वो एक ऑफिसर बना। दोस्तों टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों आज हेलो ईटानगर में हमने बात की पढ़ाई, सपनों और उम्मीद की। अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो तो बस इतना याद रखिए, रुकना मत। बादल चाहे कितना भी घना हो, सूरज को रोक नहीं सकता। मुश्किल चाहे कितने भी हो, मेहनत और हौसले से को वो हरा नहीं सकती। बुक्स बंद करने से पहले खुद से एक बात जरूर कहिए, मैं थोड़ा स्लो हो सकता हूँ लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपकी आरजे लूसी, आपकी दोस्त और होस्ट लेती हूँ आपसे आज्ञा। खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने सपने देखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर उनका होता है जो आज थोड़ी नींद सैक्रिफाइस करके कल का सनराइज डिजाइन करते हैं। नमस्कार और सुनते रहिए कार्यक्रम हेलो ईटानगर।

0: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर या आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी

0: उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग का बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला एक पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडपड्डी के पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमरीका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: Yeah.
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट फिल्मी अड्डा यानी फिल्मी गपशप में, जहां हर बात होती है सिनेमा के नाम, लाइट्स, कैमरा और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे लूसी, लेकर आई हूं बॉलीवुड की ताजा खबरें, ओटीटी दुनिया का धमाका, अपकमिंग मूवी रिलीजेज और थोड़ी सी स्पाइसी गॉसिप। तो चाय कॉफी लेकर कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट होने वाले हैं एकदम ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, इस वक्त बॉलीवुड का एटमॉस्फेयर काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ड्रामास, एक्शन फिल्म्स, हॉरर कॉमेडीज और रोमांटिक एंटरटेनर्स, सब कुछ एक ही पाइपलाइन में है। इस महीने मई के मंथ को कई इंटरेस्टिंग मूवीज और ओटीटी प्रोजेक्ट्स ऑडियंस के अटेंशन को खींच रहे हैं, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल फिल्म राजा शिवाजी काफी बस क्रिएट कर रही है, जिसमें ग्रैंड विजुअल्स और पावरफुल स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। और साथ ही कॉमेडी लवर्स के लिए भी काफी गुड न्यूज आई है, क्योंकि धमाल 4 को लेकर ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट स्टेडली बढ़ रही है। अजय देवगन और गैंग फिर से केओस और कॉमेडी का तड़का लेकर आने वाले हैं। और दोस्तों, एक वक्त था जब फ्राइडे मतलब थिएटर्स होता था, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट को पॉकेट में डाल दिया है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो, हॉटस्टार, सोनी लिव और Z5 पर हर वीक नए शोज और मूवीज रिलीज हो रहे हैं। इस महीने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, इमोशनल ड्रामास और एक्शन सीरीज का काफी क्रेज बना हुआ है। कुछ ट्रेंडिंग ओटीटी

टाइटल्स में है सिटाडेल सीजन 2 ग्लोरी और कई रीजनल फिल्म्स के डब्ड वर्शन ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ओटीटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ब्लैंकेट लीजिए, चाय लीजिए और पॉज बटन। थिएटर्स में तो इमोशनल सीन के बीच पॉपकॉर्न लेने उठना पड़ता है, ओटीटी पर बस रिमोट का राज होता है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं फिल्म का अगला गीत, जो है कृष्णा कॉटेज फिल्म से, जिसे आप सुनेंगे श्रेया घोषाल की आवाज में।

बॉलीवुड कॉरिडोर्स में एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो को लेकर। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन वाली इस फिल्म का डार्क और इंटेंस वाइब ऑडियंस को काफी इंट्रीगिंग लग रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म के ओटीटी राइट्स और रिलीज स्ट्रेटजी को लेकर इंडस्ट्री में काफी डिस्कशन हो रहा है। और ऑनेस्टली शाहिद कपूर जब इंटेंस रोल में आते हैं तो स्क्रीन पर फुल वोल्टेज एनर्जी लेकर आते हैं। कबीर सिंह के बाद ऑडियंस उनके डार्कर कैरेक्टर्स को और भी क्लोजली फॉलो करने लगी है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बॉलीवुड की गॉसिप की गली में, जहां कॉफी से ज्यादा गर्म होती है रूमर्स। इंडस्ट्री में इस वक्त कई अपकमिंग फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस क्लैशेस के को लेकर डिस्कशंस हो रही हैं। फैंस सोशल मीडिया पर ऑलरेडी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि कौन सी मूवी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और कौन सी सिर्फ ट्रेलर तक ही सीमित रह जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियंस अब सिर्फ स्टार पावर नहीं, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट भी डिमांड कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ बिग बजट फिल्म्स एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं दे पाए, जबकि कुछ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स क्वाइटली ऑडियंस का दिल जीत गई। बॉलीवुड का ऑडियंस अब स्मार्ट हो गया है दोस्तों, ट्रेलर देखकर ही पब्लिक का इंटरनल रिव्यू बोर्ड एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों आजकल इंडियन सिनेमा का एक और एक्साइटिंग ट्रेंड है, वो है पैन इंडिया फिल्म्स। साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के कोलैबोरेशन स्टेडली बढ़ रहे हैं। ऑडियंस को अब लैंग्वेज बैरियर से ज्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग मैटर करती है। इसी वजह से साउथ एक्टर्स की हिंदी ऑडियंस में ही जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनी हुई है और बॉलीवुड एक्टर्स भी साउथ डायरेक्टर्स के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 2026 में कई बिग पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स

लाइन अप में है जहां एक्शन, माइथोलॉजी, इमोशनल ड्रामा का मैसिव कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा कार्यक्रम का अगला गीत, जो है हीरोपंती फिल्म से, और इस गीत का नाम है आ रात भर।

दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग रिलीजेस के बारे में जो ऑडियंस ईगरली वेट कर रही है. VVAN फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट अपने मिस्टीरियस फॉरेस्ट बेस्ड थ्रिलर कंसेप्ट की वजह से बज में है. हॉरर कॉमेडी लवर्स के लिए भूत बंगला को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. और हिस्टोरिकल और एक्शन जॉनर के फैंस राजा शिवाजी और दूसरे बिग स्केल फिल्म्स को लेकर सोशल मीडिया पर ऑलरेडी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है. सिनेमा हॉल्स में इस साल पॉपकॉर्न की खुशबू और विसल्स दोनों काफी लाउड रहने वाले हैं. दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चेंज ऑडियंस यह है कि ऑडियंस का टेस्ट में भी हमें ये देखने को मिल रहा है. अब सिर्फ ग्लैमरस सॉन्ग्स यानी और ह्यूज सेट से काम नहीं चलता. पब्लिक को चाहिए कुछ रिलेटेबल कहानियाँ, कुछ इमोशनल गहराई और स्ट्रांग परफॉर्मेंसेस. इसी की वजह से वेब सीरीज और रियलिस्टिक सिनेमा के क्रेज स्टेडिली बढ़ रहे हैं. एंड मुझे भी लगता है कि ये सब ऑनेस्टली अंडररेटेड है. और सच कहूँ, कभी कभी एक सिंपल इमोशनल सीन भी CGI एक्सप्लोशन से ज्यादा पावरफुल लगता है. सिनेमा का असली मैजिक वही होता है जो दिल में रह जाए. तो आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा ये कार्यक्रम का अगला गीत जो है कहो ना प्यार है का टाइटल ट्रैक.

0: दोस्तों, फिल्मी गपशप का सफर अभी भी जारी है और अब वक्त हो गया है एक ऐसे गाने का जो ओल्ड बॉलीवुड रोमांस की खुशबू का सफर लेकर आता है। कुछ गाने सिर्फ सुनाई ही नहीं देते, वो सीधा यादों के एल्बम के एक पन्ने को खोल देता है। अगला फिल्म है मिस्टर नटवर लाल से परदेसिया ये सच है पिया। इस गाने में मस्ती है, रोमांस है और वो क्लासिक बॉलीवुड का चार्म है जो आज भी हमारे दिल को इंस्टेंटली ग्रूव मोड में डाल देता है। इस एवरग्रीन मेलोडी को अपनी खूबसूरत आवाजों से सजाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने और स्क्रीन पर इसका मैजिक और भी यादगार बन जाता है लेजेंडरी अमिताभ बच्चन और रेखा की चार्मिंग केमिस्ट्री के साथ। तो दोस्तों, थोड़ा सा रेट्रो मूड ऑन कीजिए, मेमोरीज का कैसेट रिवाइंड कीजिए और एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा म्यूजिकल सफर सिर्फ हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप पर।
1: Yo, listen out there!

दोस्तों कार्यक्रम जारी रखते हैं फिल्मी गपशप, जहां हम लेकर आते हैं इमोशन स्टाइल्स और सिनेमा का गीत का नया रंग। अब जो गाना आने वाला है उसमें गुजराती कल्चर की मिठास भी है, मॉडर्न रोमांस का फ्लेवर भी है और एक फ्रेश यूथफुल वाइब भी है। फिल्म है व्हाट्स योर राशि का ये चार्मिंग ट्रैक सूचे, सुनते ही मूड एकदम लाइट और चीयरफुल हो जाता है। इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है बेला शेंडे और सोहेल सेन ने, और स्क्रीन पर नजर आते हैं प्रियंका चोपड़ा जॉनस और हरमन बावेजा। गाने का रिदम तो एकदम ब्रीजी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाम की हल्की हवा और लॉन्ग ड्राइव का परफेक्ट कॉम्बो हो। तो दोस्तों अपनी स्माइल रेडी रखिए और एंजॉय कीजिए फन फिल्ड ये मेलोडी सूचे फ्रॉम द मूवी व्हाट्स योर राशि।

0: दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जारी रहेगा कार्यक्रम फिल्मी गपशप सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Love my eco, cause it's got more power.
2: And it also comes with all new safety features.
3: We love our eco, cause we can bring all our friends.
4: We love our eco, cause it's made every journey special.
5: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
6: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों आपका स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में, जहां हम बात कर रहे थे बॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्म्स के बारे में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में और कुछ फिल्मी गपशप। और चलिए मैं अभी आपको दे देती हूँ ओटीटी के कुछ वॉच लिस्ट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से। अगर आप वीकेंड के लिए कुछ वॉच लिस्ट बना रहे हैं तो ये थ्रिलर लवर्स के लिए ये क्राइम ड्रामा और स्पाई सीरीज ट्रेंडिंग है, जैसे कि फैमिली मैन। फैमिली ऑडियंस के लिए लाइट कॉमेडी और एंटरटेनर्स अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं मूवी कटहल जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और रोमांस फैंस के लिए इमोशनल लव स्टोरीज भी लाइनअप में है, जैसे कि ये नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आप देख सकते हैं आप जैसा कोई, जहां पर आप देखेंगे माधवन को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रोल में। इस मंथ कई मल्टीलिंगुअल ओटीटी रिलीजेस भी आए हैं जो कि हिंदी डब्ड वर्शंस में भी अवेलेबल है। बस एक दिक्कत है दोस्तों, मूवी चूज करने में आधा टाइम निकल जाता है और फिर एंड में वही पुरानी फिल्म चलती है जिसे आप 2-3 बार ऑलरेडी देख चुके होते हैं। तो दोस्तों आज की फिल्मी गपशप में हमने बॉलीवुड किसे लिया, कुछ बॉलीवुड अपडेट्स और उनका फुल मसालेदार टूर थिएटर से ओटीटी तक, अपकमिंग रिलीजेस से गली के गॉसिप तक। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, कभी लाफ्टर होता, लाफ्टर देता है, कभी इमोशंस, तो या तो कभी इंस्पिरेशन या कभी एक परफेक्ट डायलॉग जो जिंदगी भर याद रह जाता है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे लूसी। अब लेती हूँ आपसे आज्ञा, अगली बार फिर मिलेंगे नए ट्रेलर्स, नए रूमर्स, नए एंटरटेनमेंट, नए पिटारे के साथ सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के कार्यक्रम फिल्मी गपशप पर। और याद रखिए दोस्तों, लाइफ में इंटरवल जरूरी है, लेकिन पिक्चर तब तक खत्म नहीं होती जब तक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है। नमस्कार, देखते रहिए, सुनते रहिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप। और अब सुनेंगे ये अगला गीत जिसका नाम है दिल का रिश्ता का टाइटल ट्रैक।
1: सब्सक्राइब नाउ।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप पूछिए पलू में। अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता

0: शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने दिल के करीब कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में, जहां हर गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं बल्कि किसी की याद, किसी की मुस्कान और किसी के दिल की आवाज बनकर दिल तक पहुंचता है। सबसे पहले दिल से शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का जो रोज अपने SMS विशेस और गीत के रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। आपका ये प्यार और लगातार सपोर्ट ही इस प्रोग्राम को जिंदा रखता है। कभी दोस्ती के नाम का एक गाना, या कभी फैमिली के लिए एक डेडिकेशन हो, कभी किसी खास याद को महसूस करने का एक जरिया, रेडियो ऑन डिमांड आप सभी की इमोशंस की प्लेलिस्ट बन चुका है। दोस्तों, अब जब रिक्वेस्ट हमारे पास आई है वो काफी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है। असम से हमारे एक श्रोता है जिसका नाम हितेंद्र दास है, जो कि सोनबिल कुदाली असम के रहने वाले हैं ये, और उन्होंने एक गाने गीत की फरमाइश की है और ये हम सभी आरजेज और आकाशवाणी के सारे श्रोताओं के नाम डेडिकेट किया है। उन्होंने अपनी माँ की याद में उन्हें ये ट्रिब्यूट करके उनकी मेमोरी में ये रिक्वेस्ट भेजी है हमें। और सच कहूँ, माँ के लिए जो एहसास होता है उससे शब्दों में पूरी तरह बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। माँ एक ऐसा लफ्ज है जो थकान में सुकून बन जाता है, उदासी में दुआ बन जाता है, और जिंदगी के हर मोड़ पे एक इनविजिबल स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति बनकर आपके साथ खड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस इमोशनल पल में हम हितेंद्र दास की स्वर्गीय माँ के नाम ये गीत सुनते हैं। इस गीत का नाम है ओ माँ मेरी माँ, जो कि है छोटी बहू फिल्म से और जिसे अपनी सोलफुल आवाज दी है लता मंगेशकर ने। और इसी के साथ और एक स्पेशल सॉन्ग भी मैंने जोड़ दिया है, जो कि है मेरी माँ फिल्म से, जो है मेरी माँ इस गीत का नाम है, जो है यारिया फिल्म से, और इसे गाया है स्वर्गीय के ने। ये गाना हर उस दिल के लिए है जो माँ की याद को अपने अंदर एक रोशनी की तरह संभाल कर रखता है। तो दोस्तों, वॉल्यूम को हल्का सा बढ़ा दीजिए और अपने दिल को इन इमोशंस के साथ बैठने दीजिए। ये दोनों खास गीत सिर्फ आपके अपने कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर।

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco, cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
5: श्रोता, छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में और अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर. अगला फरमाइश आई है हमें रमेश पात्रो, रुनू पात्रो और लगी से, जो कि गोलाघाट असम के रहने वाले हैं. उन्होंने ये गीत ओ हसीना, जो कि है फिल्म तीसरी मंजिल से, उन्होंने ये सॉन्ग को डेडिकेट किया है भाई कौन मुंडा अमोल बसुमतारी, विमोल बसुमतारी और जोगेंद्र रोंगपी को. तो लीजिए, आइए सुनते हैं ये गीत आपकी फरमाइश पर, रमेश पात्र जी.

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में अब वक्त हो गया है बहुत ही खास म्यूजिकल मोमेंट का। बॉलीवुड और रेट्रो मेलोडीज अपनी जगह है, लेकिन जब बात अपनी मिट्टी की आवाज की हो, अपने लोकल टैलेंट की हो, तो दिल का कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की म्यूजिक इंडस्ट्री धीरे धीरे एक नई पहचान बना रही है। यहाँ के सिंगर्स, म्यूजिशियंस और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपनी आवाज और टैलेंट के दम पर लोगों के दिल जीत रहे हैं। और सच कहूँ दोस्तों, लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना सिर्फ उनका हौसला बढ़ाना नहीं होता, बल्कि अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करना भी होता है। अब जो दो गाने आने वाले हैं, वो है हमारे अपने लोकल सिंगर अरुणाचल के पॉप सेंसेशन की आवाज में। पहला गाना है एक तू ही है और दूसरा है इबादतें। ये दोनों गीत की फरमाइश किए हैं मिस्टर तलाम कामदेर ने, जो कि दोईमुख एमजी के रहने वाले हैं, और हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो हमारे लोकल आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यही तो जरूरत है हमारे अरुण एफएम 103.1 की स्पिरिट में, अपने लोकल आवाजों को आगे बढ़ाना, अपने म्यूजिशियंस को सेलिब्रेट करना और नॉर्थ ईस्ट की मेलोडीज को हर घर तक पहुंचाना। तो चलिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और फील कीजिए अपनी मिट्टी की खुशबू से भरे ये सोलफुल ट्रैक्स, इबादतें और एक तू ही है, सिर्फ यही आपके अपने रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लूसी।

दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड का ये म्यूजिकल सफर आप सभी श्रोताओं का प्यार और लगातार भेजे रहे रिक्वेस्ट की वजह से ही इतना खूबसूरत बनता जा रहा है। हर SMS और हर डेडिकेशन और हर मैसेज हमें ये महसूस कराता है कि रेडियो सिर्फ एक आवाज ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक रिश्ता है, और इसलिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी श्रोताओं का जो इस प्रोग्राम को अपने प्यार से हमेशा जिंदा और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। अब वक्त हो गया है हमारे अगले रिक्वेस्ट का। ये प्यारा सा गाना रिक्वेस्ट किया है जोगेंद्र रोंगपी, धर्मकारी रोंगपी और सोनाली इंगतिपी, जो कि सारी हजन कार्बी आंगलोंग असम के रहने वाले हैं। उन्होंने ये गीत को डेडिकेट किया है अमल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी और भाईकोन मुंडा और रमेश पात्र को। तो ये दोस्ती में जो आपस आप लोग के बीच जो आपस में डेडिकेशन होता है वो काफी क्यूट है। तो चलिए आपके दोस्तों के नाम ये आपकी फरमाइश पर ये पेश है मैं तेरे इश्क में, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में हर रिक्वेस्ट एक नए कनेक्शन की तरह होती है और कुछ श्रोताओं ऐसे होते हैं जिनके मैसेजेस आते ही पुरानी यादें भी साथ आ जाती है। अब जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है वो भेजी है श्री नानी तागो ने, जो कि निर्जली नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश से है। सबसे पहले उनका दिल से शुक्रिया कि इतने दिनों बाद फिर से उनका मैसेज और रिक्वेस्ट हम तक पहुंची। सच कहूं दोस्तों, जब कोई हमारा रेगुलर लिसनर कुछ वक्त के बाद दोबारा कनेक्ट करता है तो लगता है कि जैसे रेडियो फैमिली को कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये बहुत ही सोलफुल और रोमांटिक मेलोडी, जिस गीत का नाम है तुम मिले। ये गाना इमोशंस और मेमोरीज के साथ एक ऐसा सफर है जो दिल को बहुत ही जेंटली टच करता है। फिल्म क्रिमिनल का ये ब्यूटीफुल ट्रैक अपनी मेलोडी और इमोशंस की वजह से आज भी हमारे श्रोताओं के दिल के करीब है। तो दोस्तों, इस स्पेशल रिक्वेस्ट को दिल से फील कीजिए और एंजॉय कीजिए ये गीत सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन अरुण FM, रेडियो ऑन डिमांड पर।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड का म्यूजिकल सफर का आखिरी गीत है। ये है एक थी डायन फिल्म का सोलफुल ट्रैक जिसका नाम है यारम। ये मेलोडी फ्रेंडशिप, इमोशंस और अनस्पोकन फीलिंग्स की एक खूबसूरत एहसास लेकर आती है। गाने का म्यूजिक बिल्कुल रात की हल्की हवा जैसा लगता है, शांत, सूदिंग और दिल के बहुत ही करीब। और इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को अपनी सुनहरी आवाज दी है सुनीति चौहान और क्लिंटन सेलेजो ने। इस गीत की फरमाइश आई है हमारे मिस टोपी बागरा से, जो कि डीएन कॉलेज में है फिलहाल। तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए आप अपना नॉइस साइड में रखिए और सुनिए ये टोपी जी की फरमाइश पर ये यारम फिल्म से एक थी डायन फिल्म का ये गीत।

0: तो दोस्तों इसी के साथ रेडियो ऑन डिमांड का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस म्यूजिकल सफर पर आप सभी श्रोताओं ने अपने प्यार रिक्वेस्ट और ब्यूटीफुल डेडिकेशन से हर पल को खास बना दिया। हर गाना किसी की याद बना, किसी की दोस्ती, किसी की मोहब्बत और किसी की आवाज बना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की पहली प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे आज के कार्यक्रम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता मार्दो जिर्दो। मैं थी आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी और हमारी दूसरी प्रसारण सभा जो कि अब से लेकर 11 बजे से शुरू होने वाली है उसके लिए हमारी आरजे दामपाक स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। आशा करती हूं कि आज के आपको कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो यानी आज्ञा दीजिए मुझे जाने के लिए। शुभ दिन। दोस्तों कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ईडापट्टे के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा

कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औडिहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there's a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
1: आज समय की कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं, और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
0: He said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products.

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में पेश है गीत कवर नहीं दोस्ताना फिल्म से। दोस्तों, एक दोस्ताना एक बहुत पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग है। इस गाने को विशाल दत्तलानी, श्रेया घोषाल और अमानत अली ने गाया था। म्यूजिक दिया था विशाल शेखर ने। गाने की खास बात उसका सॉफ्ट रोमांटिक फील और इमोशनल लिरिक्स है। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस या कन्फ्यूजिंग लव फीलिंग्स को बहुत अच्छे से दिखाता है। तो पेश है कार्यक्रम फिल्म लहर में एक लकीर फिल्म दोस्ताना से।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत हार्डकोर राजा हसन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाजों में फिल्म बचना ए हसीनों से। आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम पर और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर। और कार्यक्रम में पेश है गीत तमाशा फिल्म से, गीत के बोल है मटर गस्ती और इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने।

0: दोस्तों, मैं आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। आपको बता दूं कि अब से कुछ पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली के अंदर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित

0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oaths as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office in secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs, Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as chief minister. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat last evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel.
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा।

0: गीत संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

शायद अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के अंदर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुणा एफएम है, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपको हमारी अगले कार्यक्रम की और आगे ले चलने की। जी हाँ, प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। दोस्तों, आपको बता दूं कि गजल शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है और इसका अर्थ है प्रिय से बात करना। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में पेश है पहला गजल बाबों की आवाज में, आज जाने की जिद।

0: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम गजल यही पर समाप्त होते हैं और आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आज का मेहमान।
1: प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान है पॉपुलर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश श्री तालो एंथनी। तालो एंथनी ओरिजिनली 0 लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वे शुरू से ही वेस्ट कामेंग जिले में रहे हैं। प्रारंभ में उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेरगांव वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम किया। एंथनी ने कई पुरस्कार जीते हैं इंक्लूडिंग यंग अचीवर अवार्ड फॉर हिज फिल्म ऑन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आइए मिलते हैं वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर श्री तालो एंथनी से। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू फॉर हैविंग मी।
1: बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, जब हम वनों और वन्य जीवन में आपकी रुचि कैसे जगे? व्हाट स्टिर्ड योर इंटरेस्ट इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ?
2: एक्चुअली ऐसे था कि मुझे फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर में ही इंटरेस्ट ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब हम स्कूल लाइफ में थे तब हमारा वो रील वाला कैमरा आता था
1: जी,
2: तो वो लोग हाइकिंग पिकनिक वगैरह में सब ये लेना है वो लेना है, मेरा था कि मैं कैमरा लेके जाना, तो कैमरा लेके फिर जितना दोस्तों है उनसे 25 रुपीज या 50 रुपीज कलेक्ट करके हम एक रोल खरीदते थे जिसको डाल के हम अपना अपना डिवाइड होता था। जैसे 5 लोग हैं तो आपका 5 मेरा 5 वो, तो वो चल रहा था, तब से ही चल रहा था हमारा। वो ऐसे ही मैं फोटो खींचता था, बाद में डेवलप करता था, ये सब इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना सीरियस है इंटरेस्ट है। तो बाद में फिर ये मोबाइल का जमाना आ गया, फिर मोबाइल से मैं क्लिक करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही करके 2011 में जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहा था, तो हमारे वहाँ पे एक चिल्ड्रेन का वो रहता है कंजर्वेशन, एक कैंप रखता है जो कि आपका वाइल्ड लाइफ वीक के महीने में ही रहता है। तो हम आसपास के स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पे बाहर से रिसोर्स पर्सन लेकर आके वहाँ पे उनका 3 दिन का कैंप होता था। तो उसपे मैं जो हमारा मिलोता सर था उन्होंने मुझे लेके गया वहाँ पे, चलो जाते हैं। मैं वहाँ पे गया, जाने के बाद देखा

0: ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फोटो खींचना तो आदत है ही है, तो ऐसे करके मैं एक दो फोटो लेना स्टार्ट कर दिया। तो तसे सर देखा कि वो इंटरेस्ट है मैं फोटो तो खींचने में, तो बाकी जब कुछ कैलेंडर के लिए हो या फिर कुछ भी हमारा इवेंट का कहीं तो फोटो चाहिए तो वो मुझे ही मांगते थे। ऐसे कर करके फिर बाद में एक कैमरा मिला, फिर कैमरा से मैंने स्टार्ट कर दिया। बाद में धीरे धीरे जाके जब स्टूडेंट्स के साथ में बैठा, जब रिसोर्स पर्सन ने बताया कि ये वाइल्ड लाइफ या फिर जो हमारा फॉरेस्ट है कितना इम्पोर्टेंट है, वहां से जाके शायद मेरा इंटरेस्ट जो है बहुत बढ़ गया। जब हम तालो एंथनी की बात करते हैं, तालो एंथनी और ग्रीन हब एक दूसरे से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, तो आप कैसे इस ग्रीन हब से एसोसिएट हुए?
1: ग्रीन हब अगर बोले जाए तो वो मेरे लिए दूसरा जन्म होगा, क्योंकि जैसे कहानी बहुत फिल्मी है लगता है मुझे। मैं जब छोटा था तब मेरे पापा का देहांत हो गया, उसके बाद मैं घर का मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरा मम्मी भी जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो कंटीजेंसी है, हम चार बच्चे हैं तो घर का सबसे मैं बड़ा होने के नाते मुझे भी काम करने पड़ गया। तो उस हिसाब से क्या हो गया कि मेरा जो इंटरेस्ट था कैमरा के ऊपर में, और मैच जो वो देखता था मैं, कि मैन वर्सेस वाइल्ड देखता था, डिस्कवरी चैनल देखता था, तो मैन वर्सेस वाइल्ड जैसे बनना है मुझे, जाना है इधर उधर करना है, मजा आएगा ये सोचता था। लेकिन वही मिडिल क्लास फैमिली वाला कहानी जैसा मेरा वो जो कहानी था वो भी सपना था अधूरा रह गया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाके कहीं सीख पाऊं, और अरुणाचल में ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे सामने है मैं जाके वहाँ पे सीखूं, ये भी नहीं था। तो जब मैं ये फोर्स डिपार्टमेंट काम कर रहा था, तसे सर ने देखा मेरा काम, तो मिलो तसे सर देव हमारे, उन्होंने एक बार मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि एंथनी ऐसे से है, एक ग्रीन हब करके फॉर्म निकला है और एडमिशन के लिए चल रहा है, और वो फोटोग्राफी सिखा रहे, तुम इंटरेस्टेड है क्या? मैं बोला सर मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे करके सारा फॉर्म वॉर्म फिल किया, उनको दिया, इंटरव्यू हुआ। तो वहां पे जब गया तो देखा बहुत सारे लोग भी आए हैं, इवन जब हम गए थे हम तो फर्स्ट बैच के थे उस टाइम बाहर से, लेकिन बहुत सारे लोग गए थे जो ऑलरेडी सर्विस थे, कोई तो बहुत सारा मैगजीन के साथ काम कर रहा है कोई, पर मैं उस समय में DSLR कैमरा कभी देखा भी नहीं था, मतलब कि टच नहीं किया था, दूर से देखता था टच नहीं किया था, मेरे पास तो छोटा सा ब्रिज कैमरा था, पॉइंट एंड शूट कैमरा, उसी से कर रहा था, वो भी लेके गया था मैं इंटरव्यू के समय में, लेकिन उनका बात सुन के मैं उसको बैग से निकाला ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये तो मिलने वाला नहीं है, मैं गलत जगह आ गया, लेकिन लकीली पता नहीं उन्होंने कुछ तो देखा मेरे अंदर में, तो लकीली मुझे वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से जो मुझे ट्रेनिंग मिला वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिला मुझे कि सच में फिल्म मेकिंग होता क्या है, वहां से मैं सीखकर अभी और उसी लाइन पे मैं अभी चल रहा हूँ।
0: जी, इसके बाद आपने जो जो फिल्में बनाई, किस तरह की फिल्में बनाई, बहुत सारे फिल्मों को तो अवार्ड्स भी मिले हैं, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं।
1: तो ग्रीन अप के समय में हमारा जैसे एक साल रहता है, ग्रीन अप का प्रोग्राम रहता है, उस पे हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और वो जो हमारा नेचर कैंप था जो हम 2011 से चल रहे थे, तो 2015 में उन्होंने तसर सर ने बुलाया कि इस बार भी हो रहा है तुम आ जाओ। तो लास्ट टाइम जितना भी गया था मैं उसमें तो हमारा ऐसा था कि मैं उनके साथ जाता था फोटो खींचने, लेकिन इस बार मुझे इनवाइट किया ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर इवेंट को कवर करने के, तो मैं बहुत खुश था कि जाना है, क्योंकि मैं आ गया, आने के बाद मैं उनके साथ में रहा, हालांकि जितना हमारा रिसर्च पर्सन सब हम अच्छे दोस्त हैं, जान पहचान है, तो फिर वो करे, तो पहले तो मैं फोटो शूट लेता था अभी, लेकिन मैं वीडियो में ट्रेंड हो गया था, एडिट सीख गया था मैं, तो उस हिसाब से मैं उनको दिखाना चाह रहा था कि ये एक्चुअल में प्रोग्राम होता कैसे, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी ये जमाना आ गया कि बोलना कम करना चाहिए, दिखाना ज्यादा चाहिए हमें। तो उस हिसाब से मैंने उनको एक छोटा सा 10 to 15 मिनट का छोटा वीडियो बनाया, उसको जाके एडिट किया, एडिट करने का दिखाया, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, जो ग्रीन हब के लोग थे, इवन जो हमारे रिसर्च पर्सन था सर, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो वो फिल्म को लेकर हमारा रीता बैनर्जी जो डायरेक्टर ग्रीन हब के है, उन्होंने कोई तो फिल्म फेस्टिवल में सबमिट कर दिया। तो एक दिन मुझे कॉल आता है, बताते हैं कि वहां पे एक तुम्हारा फिल्म को भेजा था, वो सिलेक्ट हो गया, तुमको दिल्ली जाना है। तो बाद में पता चला कि वो वुड पिकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो उसमें 94 कंट्रीज से फिल्म आए थे और बहुत सारा फिल्म था, तो मेरे को लगा कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जाऊँ, सीखूँ, देखूँ कि उनका भी फिल्म कैसा होता है क्या, तो मैं चला गया दिल्ली। तो मैं अपना फ्रेंड को भी लेके गया, वहाँ पे बैठा, बैठने के बाद में जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैठने के बाद में वो फिल्म फेस्टिवल सारा फिल्म देखा, फिर बाद में उन्होंने बताया था कि शाम को अवार्ड ये सेरेमनी है, आपको सब आ जाना, वहाँ पे डिनर वगैरह होगा। तो मैं दोस्त को बोला कि देखो कुछ मिलने वाला तो है नहीं, फिल्म अच्छा से देख, अच्छा खाना मिलेगा, खाते हैं वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, इतना अचानक से मेरा नाम लिया गया यंग अचीवर अवार्ड के लिए, क्योंकि उन्होंने फिल्म तो सारा का देख लिया था और हमारा तो फर्स्ट फिल्म था, पहला फिल्म था, तो शायद उनको इंटरेस्टिंग लगा, मेरा टेक्निक इंटरेस्टिंग लगा या फिर वो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा, कुछ तो लगा उनको कि यंग अचीवर अवार्ड दे दिया। तो वहां से वो जर्नी मेरा फिर स्टार्ट हो गया।
0: तो जब अचानक से आपका नाम अनाउंस हुआ कि आपके जो फिल्म है उसको अवार्ड मिलने वाला है, तो वो उस वक्त का जो रिएक्शन था, आपका जो फीलिंग्स था, इमोशन था, किस तरह के था
1: उस समय? मैं एक्चुअली वो रात तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया क्या हुआ क्या है
0: जी।

0: तो वहां से हम वापस भी आ गए फिर बेटा। तो लेकिन वो जो मेरा फ्रेंड था उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया ग्रुप में कि जो हमारा ग्रीन अप का ग्रुप है वो रजिता मैम को कह दिया कि अवार्ड मिल गया है। वहां से वो बहुत खुश और मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता क्या है। तो जाके मैं सो गया। नेक्स्ट डे जब घूम रहे थे ऐसे हुआ था कि मैं अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी को बताया कि मम्मी एक फिल्म फेस्टिवल जब आया था यहाँ पे वो अवार्ड जीत गया। तो बोला कि अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है कोई बात नहीं ठीक है करके रख दिया। इसके बाद में 3 दिन के बाद मैं वापस तेजपुर आ गया था दिल्ली से। इसके बाद फोन आया कि अचानक से मम्मी का, मैं हेलो बोला तो तुमको अवार्ड मिला है? हाँ अवार्ड मिला इतने लोग के सामने। हाँ तो तुम टी शर्ट पहन के क्यों गए? शर्ट पहन के जाना था। मतलब कि उस समय मम्मी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अवार्ड मतलब इतना बड़ा है ये। लेकिन तो वही रिएक्शन मेरा भी था कि मिल तो गया है लेकिन ये कैसे मिल गया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर वो तस्से सर को जब भेजा उन्होंने फिर वो उसको एक छोटा सा आर्टिकल में डाल दिया न्यूज़पेपर में कि हमारा लड़का को ये मिला है इसको तो देना ही है। उसके बाद में पता चला कि सच में अवार्ड कितना बड़ा है तब मुझे रियलाइज हुआ, तब लोग मेरे नाम को थोड़ा जानना शुरू हो गया। तालो एम तो नहीं करके कोई तो है करके। तो वो एक मतलब कि वो एक फील था जो आपको बहुत चेंज कर दिया था।
1: तालो एंथोनी एक कंटेंट क्रिएटर है और ज्यादातर लोग वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर के तौर पर जानते हैं। व्हेन यू आर शूटिंग एट जंगल या इनटू द जंगल या इनटू द वुड, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है?
0: यही कि जहाँ बैठने वाला हूँ वहाँ सांप तो नहीं है। तो यही रहता है हमारा माइंड में सब। जैसे कि हम कोई किसी स्पीसीज के ऊपर में शूट करने जा रहे हैं तो हम रैंडमली नहीं जाते हैं, उससे पहले जो रिसर्चर है जो साइंटिस्ट है उस स्पीसीज के ऊपर काम कर चुका है उनको हम कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं या फिर इंटरनेट से हम कुछ ढूंढते हैं उसके बारे में कि कैसा है
1: जी
0: कौन से। क्योंकि कोई बर्ड होता है वो आपका मॉर्निंग में मिलेगा, कोई बर्ड होता है वो आपका कभी दिन में आ जाए। और उनका खाना देना होता है जो नेस्ट में देना होता है उनका अलग होता है, किसी का नेस्टिंग अलग होता है। तो उसको पहले आपको समझना होता है कि एक्चुअल में क्या है, अदरवाइज आप साल भर वहीं पे जंगल में रह जाओगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए जाने से पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, पहले होमवर्क कीजिए फिर जाके आप जो जगह लगता है कि आपको ये सही है यहाँ पे हो सकता है लेकिन एक डिस्टेंस बनाए रखना है। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे एनिमल से एकदम सामने उसके आगे, वो भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके लिए भी ट्रेट है और हमारे लिए भी ट्रेट है। खतरा है कि जब भी आप किसी को भी कुछ लगता है कि वो ट्रेट है तो घर के बिल्ली भी हमला कर देते आपके ऊपर, तो वो तो फिर वाइल्ड है तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए एक मिनिमम डिस्टेंस एक बनाए रखते हैं अच्छे से हम, फिर अपना हाइट जो भी होता है उसको बनाते हैं, उसमें सारा इक्विपमेंट सामने रख देते हैं ताकि फिर ज्यादा हिलना ना पड़े। इसके बाद में वहां पे बैठ के उनका इंतजार करते हैं।
1: कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या तो कुछ एक्सीडेंट हुआ जब आप शूट कर रहे हो, कुछ हुआ हो जिससे आप डर गए या तो बहुत ही एक्साइटिंग था?
0: मुझे याद है मैं काजीरंगा में हम शूट कर रहे थे। असम में बहुत काम किया मैं, जितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर नेशनल पार्क हो सब ऑलमोस्ट तो मैं काम कर चुका हूँ। तो एक बार काजीरंगा में हमने शूट करके शूट करने का जब शाम को वापस जा रहे थे तो हमारा ये जो महिंद्रा का कैंपर होता है तो अंदर में वो सारे रिसर्चर ये सब बैठे हुए थे। मैं बाहर में बैठा था कि कुछ दिख जाएगा तो मैं खींचा, ट्राइपॉड लगा के मैं आराम से जा रहा था, दूर से दिखाई लेपट देगा मैं रास्ता में। तो मैं उनको रुकाया फिर हमने अच्छा से वहां से वीडियो लिया। तो वो धीरे धीरे करके जंगल के अंदर चला गया। तो मैं बोला कि वो अंदर चला गया तो पास जाके लेते हैं। तो हम धीरे धीरे गए, देखा तो नहीं दिख रहा था, उनको भी लगा कि दिखाई नहीं हो गया खत्म। तो हम चले गए, जाने के बाद में सामने पहुंच गया, मैं आगे रुक गया गाड़ी वहां पे। तो मैं देख रहा था यहाँ पे है क्या आसपास में लेकिन नजर नहीं आया। मैं जैसे पीछे मुड़ा मेरे सामने में था वो, देख रहा था सामने कि वो इतना पास में था कि वो एक बार जंप कर दे तो आराम से मेरे पास पहुंचे। तो मेरे दिल में सिर्फ यही था कि आज तो मैं जाने खत्म होने वाला हूँ और मेरे पास वो पतला सा ट्राइपॉड था, मैं उसी का सहारा था, अगर ये आ गया तो मैं इसको सिर्फ ऐसे अपने उसके तरफ कर सकता हूँ जिससे मैं बच सकता हूँ करके वो था। लेकिन वो भी शायद उसको भी लगा कि ट्रैक नहीं है, फिर वो धीरे धीरे करके अपने आप चले गए जाना। तो वो एक दिन था जो अभी तक याद है, जब याद आता तो पूरा गूज़बम्प्स निकल जाता है। वो जंप मारता था क्या होता था?
1: तो जैसे अभी आपने कहा कि ग्रीन हब ने दूसरा जन्म दिया, हम कह सकते हैं तीसरा जन्म। तो जब पर्टिकुलरली हम वाइल्ड लाइफ शूटिंग की बात करते हैं तो इसमें जो चैलेंजेस इन्वॉल्व रहते हैं वो क्या है आपके हिसाब से?
0: 2019 में जब मैं एक सीरीज कर रहा था तो उसी सीरीज में हमारा एक हॉर्नबिल के ऊपर भी था। हॉर्नबिल के ऊपर मैं पाके टाइगर रिजर्व के अंदर में गया था। तो वहां पे हमें रिसर्चर बता दिया था कि वो पैर रहता है उसके अंदर में रहता है ना, फीमेल अंदर में है तो बाहर से उसको मेल पूरा बंद कर देते हैं फिर वो ही पूरा दाना लेके उनको खिलाते हैं। तो 45 डेज के बाद में वो क्या होता है कि फीमेल निकल जाते हैं। तो फीमेल निकलने के बाद में 10-12 दिन में वो उसका जो बच्चा है वो भी निकल जाएगा बाहर। तो फीमेल निकल के हमें फोन आया, फीमेल निकल गया अभी तो बच्चा निकलने वाला है। और हमें वो सोच चाहिए था क्योंकि हम हॉर्नबिल के ऊपर सीरीज बना था, सारा कुछ मिल गया, अभी हमें सिर्फ ये सोच चाहिए था कि बच्चे निकल के उड़ गए वहां से। तो मैं गया वहां पे, मैं होम स्टे में बैठा। तो एवरी मॉर्निंग मैं 5 बजे सारा सामान पैक करके ड्राइवर के साथ में जाता था एक गार्ड को लेकर। तो ड्राइवर वापस जाते थे, गार्ड और मैं दिन भर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक वहीं पे बैठे थे।

0: क्योंकि वो उसका नेस्ट था, मुझे पता था वो वहां पे हमने बना के बैठा। एवरी डे मैं शूट करता था। शूट करने के बाद में मुझे लास्ट में एक शॉट मिला जो वहां से वो निकल के उड़ते हुए, और वो 5 सेकेंड्स का शॉट था। वो 5 सेकेंड का शॉट के लिए मुझे 12 डेज रुकना पड़ा सेम स्पॉट में। एवरी डे सुबह 5 बजे जाओ, शाम को 3 बजे वापस जाओ, लेकिन एवरी डे रुकना पड़ा। उसके बाद में ही मुझे वो 5 सेकेंड का शॉट मिला।
1: तो इस तरह के जो चैलेंजेस इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बावजूद आपने जो भी फिल्म्स रिकॉर्ड किए हैं या फिल्म्स जो आपके पास होते हैं उसको देखना हो तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको कहाँ देखें?
0: मोस्टली हमारा काम क्या होता है कि अभी जैसे हम इतना एस्टेब्लिश नहीं है तो हम खुद फिल्म बना के अपने यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट में हम नहीं डालते हैं। हम जब भी काम करते हैं क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो जब क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आप काम करने के बाद में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उनको देते हैं और सारा राइट्स उनके पास में होता है। तो इस हिसाब से अभी कुछ कुछ काम तो मैं अपना यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, फिर बाकी का जो है वो लास्ट टाइम नेट जियो में भी एड हुआ था, उसके बाद में जाके अभी ये हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार जो है उसमें भी वो हमारा 10 सीरीज है जो सच में इंटरेस्टेड है वहां पे देख सकते हैं।
1: लेकिन उनको पे करना होगा?
0: हाँ, वो एक प्रीमियम पे करना, शायद 499 समथिंग कुछ तो है, वो तो पे करना होता है उसी साल। क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हो तो इसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहता है, तो इक्विपमेंट्स हो गया ये वो, और वाइल्ड लाइफ मतलब मेरा मानना है कि सबसे एक्सपेंसिव प्रोफेशन है जहाँ पे आप करना होता है। क्योंकि आप जैसे एक शॉट के लिए 5 सेकंड शॉट के लिए मुझे 12 दिन रुकना पड़ा, 12 दिन का होम स्टे का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, मेरा अपना खर्चा, कैमरा का जो हम रेंट पे लिया है उसका खर्चा, तो उतना खर्चा रह जाता है, लेकिन वहां में सिर्फ 5 सेकंड का शॉट मिलता है। तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ तो करना होता है, तो वो चैनल को बेचते हैं या फिर जैसे हॉटस्टार हो गया या फिर अमेजन प्राइम हो गया, उनको बेचते हैं, देखते हैं, अगर उनको पसंद आ गया तो डाल देते हैं, तो उसमें से कुछ जो भी रेवेन्यू होता है फिर उससे आगे जाके दूसरी फिल्म बनाते हैं।
1: हमें सुनने में आया कि आपने जो बुबिन कम्युनिटी वहाँ पे पाए जाने लगे, कुछ बर्ड्स के ऊपर भी काम किया है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ।
0: जो जेनेसिस 4 हमारा जो फॉर्म हुआ था उसका भी यही मकसद था कि हमको एक फिल्म बनाना है, और ये फिल्म हम जो बुगुन लियो चिचला करके एक बर्ड है उसके ऊपर मैं बनाना था। क्योंकि मैं जैसे मैं इगलनेस में बहुत काम कर चुका हूँ तो उसके बारे में पता था, ये बुगुन लियो चिचला जो एक ऐसा बर्ड है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद में ये एक लौता बर्ड था जो नया से डिस्कवर हुआ। क्योंकि उससे पहले जितना भी हमारा ब्रिटिश थे वो आके बर्ड वॉचिंग करके पूरा सारा नाम लिख रखा है, सबका नाम है, लेकिन ये एक नया बर्ड था इंडिया के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए जो नया डिस्कवर हुआ, और ये इतना कम है इनकम संख्या कि हम कह सकते हैं शायद 20 या फिर 25 भी पीस है पूरा दुनिया में, और वो ईगलनेस के अराउंड ही मिलता है। तो उसके ऊपर में क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको एक बर्ड को लेके कैप्टिव में रखना होता है, मतलब कि उसको वो तो मर जाते हैं, फिर उसको सैंपल को रखना होता है ना, लेकिन ये इतना रेयर था कि उसको भी बैन कर दिया इसके ऊपर में कि आप उसके ऊपर में रिसर्च ऐसे नहीं कर सकते, उसको आप रख सकते हैं करके। तो इसलिए हमको ये इंटरेस्ट था कि इसके ऊपर फिल्म बनाना है, और ये बुगुन भी इतना कम था, छोटा था बुगुन ये चिचला, और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी था, तो इसलिए हमने इसको पकड़ के उसके ऊपर फिल्म बनाया।
1: तो आपने बहुत सारे एनिमल या फौना एंड फ्लोरा की बात करते हैं, तो बहुत सारे फौना एंड फ्लोरा को शूट किया है, रिकॉर्ड किया है, सिर्फ इस पे फिल्म बनाई। तो जब हम अरुणाचल प्रदेश के फौना एंड फ्लोरा की बात करें तो आप क्या कहेंगे?
0: अरुणाचल पूरे दुनिया में भी और अरुणाचल में भी इतना शायद हम अभी तक 40-30% ही अभी तक हम डिस्कवर कर पाए, मतलब और 70% हमारा और है जिसको हम डिस्कवर ही नहीं किया। क्योंकि हमको लगता है कि कुछ भी चीज देखो ना, अरे ये तो हम बचपन से देखते आ रहे थे, हमें कुछ खास तो लगता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे पता चलता न्यूज़पेपर में ये तो नया स्पीसीज आ गया। तो ऐसे ही एक फिश हो गया जो हम बचपन से खा रहे थे, ये तो ऐसे ही नॉर्मली खा रहे हैं, हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे पता चल रहा है कि ये तो नया स्पीसीज है, डिस्कवर हुआ है, ऐसे नया कीड़ा डिस्कवर हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ एवरी डे अरुणाचल से भी डिस्कवर हो रहा है। बटरफ्लाई हो गया, मॉथ्स हो गया, और फिर जो एक दो लेजर्ट है वो 100 साल पहले दिखता था वो, लेकिन अभी फिर वापस से रीडिस्कवर हो रहा है। तो ये सब हो रहा है अरुणाचल में, और इतना सारा कुछ है ना कि हमको लगता है कि अभी तक 30-40% ही सिर्फ डिस्कवर हुआ है।
1: जी, जब टूरिज्म की बात करते हैं तो आपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारे टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर्सनली आपको पूछा जाए कि आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में या अरुणाचल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेस को चुनना होता, आप किसे चुनेंगे?
0: ये तो बहुत मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है एक जगह चुनना, क्योंकि सभी अभी तक मैं जितना जगह घुमा हूँ और फिल्म बनाया शूट किया उनका, हर एक जगह का अपनी खासियत है। अभी जैसे आपको स्नोफॉल देखना है आप तवांग चले जाओ, लेक देखना है तवांग चले जाओ, क्योंकि वो एक्सेसिबल है, गाड़ी से उतरते ही आपको दिख जाएगा ये। लेकिन आपको हार्ड कोर ट्रैक करना है आप अनिनी चला जाओ, मस्त जगह है, बढ़िया है एकदम, और इतना सुंदर है। 2-3 दिन आप ट्रैक करने के बाद जब वो जगह पहुंचते हो तो आपका थकान मतलब पूरा गायब हो जाता है ऐसे है। लेकिन आप फिर वाइल्ड लाइफ के लिए जाओगे तो आप ईगलनेस चले जाओ, पाके चले जाओ वहां पे आपको, या नामदफा चले जाओ वहां पे आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगा, तो उस हिसाब से अलग अलग है। फिर आप कल्चर देखना चाहते हो तो बास्कोन बासर हो गया या फिर जीरो हो गया, अलग अलग जगह आप जा सकते हैं, उसी हिसाब से जाते हैं।
1: जी, तो आपने कहा कि

0: जब हम अरुणाचल टूरिज्म की बात करते हैं तो एक प्लेस को चुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक प्लेस की अपनी अपनी खासियत है। बात करते हैं जीरो की, क्योंकि आप पर्टिकुलरली आप जीरो से हो। जब हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉपुलर है, तो जीरो के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे?
1: जीरो, जैसे जब टूरिज्म इंडस्ट्री में हम आए नहीं थे, उनके ऊपर में काम नहीं किया था इनके साथ में, तब क्या था कि हमको सुनने में आता था अरुणाचल जाओ तो सिर्फ तवांग है या फिर जीरो है, वहां पे जाइएगा। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे हमारा रास्ता बनना लग गया है तो और लोग एक्सप्लोर करने लग गए हैं, तो अभी धीरे धीरे जगह घूम रहे हैं। जीरो का ये है कि जीरो नहीं, बाकी सब भी अरुणाचल में हमारे जो एरिया है वो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो मुझे लगता है जो हमारा कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कल्चर खत्म हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है, जो हमारे जगह है जमीन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे आप जीरो को पकड़ लो, जीरो में लोग जाते थे जो हमारा बूढ़ी माँ है उनका टैटू रहता था, बूढ़ा का
0: जी
1: टैटू रहता था, उनको देखने जाते थे, उनके साथ में फोटो खिंचवाना है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम जगह में जहाँ पे ये टैटू फेशियल टैटू वगैरह चलता है, तो वहां पे जाके उनके साथ फोटो वगैरह खींचते थे, ये करते थे। दूसरा है हमारा जो पेडी फील्ड है वो जीरो का बहुत सुंदर होता था, मेन रोड बीच में है, साथ साथ में पूरा खेती है, बस सुंदर से देख के जाओ। लेकिन अभी समय के साथ में वो चेंज हो रहा है, जैसे हमारा जो टैटू कल्चर वाला है वो शायद अभी लास्ट जनरेशन है हमारे, जितना भी पूरी महान लोग है वो लोग, अगर ये खत्म हो गए तो उसके बाद में तो और कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं, वो
0: जी
1: सिर्फ फोटो में या फिर वीडियो में रह जाएंगे।
0: जी
1: और वैसे ही हमारा पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से हमको एक्सपेंड भी होना सब, और वो धीरे धीरे करके अपने जो खेती है वहां पर घर बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो खेती कर नहीं रहे, क्योंकि सब अभी कोई तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सब बाहर में है, उनको इतना हार्ड वर्क करना नहीं है, और धीरे धीरे वो पानी भी कम हो रहा है, उस हिसाब से जाके उस पर घर बनाना स्टार्ट कर। तो अभी से लेके 10 या फिर 15 ईयर्स पकड़ लीजिए, जीरो में ना ही आपको वो टेक्यू वाला कल्चर मिलेगा, ना ही वो खेती मिलेगा जिसके लिए आप जाते थे। तो अभी हमारा बच गया है वाइल्ड लाइफ, अगर आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हो अभी से तो वही टूरिस्ट फ्लो आएगा, लेकिन आपका वो जो वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आएगा।
0: तो आपने तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की है, और साथ ही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को डॉक्यूमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट इश्यू बन गया है? जैसे आई मीन अरुणाचल प्रदेश के कल्चर हुआ, टूरिज्म हुआ, ट्रेडिशन हुआ और क्लाइमेट कंडीशन हुआ, उससे डॉक्यूमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है?
1: अभी जब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जब उनके साथ में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो उनसे पता चलता है कि कुछ कुछ स्टोरीज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत यूनिक है। सबका अपना अपना स्टोरीज होता है, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, लेकिन वो ना ही आजकल किसी को बता पा रहे हैं, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, मोबाइल नहीं था, तो हम शाम को जाके अपना दादा दादी के साथ बैठते थे, वो अपना कहानी शेयर करते थे हमारे साथ, वो ही जाके फिर दूसरों को शेयर करते थे। लेकिन अभी वो समय चला गया, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो वहां पे आप मोबाइल कर रहे हो, दादा दादी के साथ बैठे हो वहां पे मोबाइल कर रहे हो, तो उनको बात करने का टाइम नहीं आपके पास में। वो जो हमारे जो फोक टेल्स थे या फिर जो भी कहानी हमारे था वो धीरे धीरे अभी खत्म हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज को अगर हम अभी कर सकें, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, इवन ये म्यूजिक वीडियो बना रहे हो, आप उसी के हिसाब से जाके एग्जैक्टली नहीं फिर भी उसको कुछ रिजेंबल करके आप एक स्टोरी बनाइए, उसके ऊपर में आप शूट कीजिए, ताकि कम से कम ये अर्काइव तो रह जाएगा कि बाद में जाके 100 साल बाद, या फिर 100 साल भी नहीं चाहिए, अभी वो 25-20 साल में ये सब सारा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कम से कम देख सके कि अच्छा हमारा ऐसे होता था, ये होता था, अभी जो हमारा ट्रेडिशनल घर बनता था वो सारा भी चेंज हो गया, पक्का घर बनना स्टार्ट हो गया, इवन बस्ती में जो घर होता था वो भी चेंज हो गया, तो इस हिसाब से ये चेंज होते रहे तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ओरिजिनल घर दिखता कैसे था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जितना हमारा कल्चर है या फिर कुछ भी ये स्टोरीज वगैरह, इनको हमको प्रिजर्व करना है, जो कैमरे से है, जो साउंड से, उनको पूरा कैप्चर करके भी रखना है।
0: जब आप पास्ट को याद करते हो, आपको पूछा जाए कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर के बारे में कुछ ब्रीफ में बताना हो तो क्या बताएंगे आप?
1: ये जो नाम है या फिर मैं शायद आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि चुटकी बजा के मैं यहाँ पे आ गया, मैंने भी बहुत पापड़ बजाए हैं यहाँ पहुँचने के लिए,
0: जी
1: तो बहुत ही मेहनत किया है। तो हमारा जो काम होता है हम काम को ध्यान देते हैं, ना कि ये ध्यान देते कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने काम में ध्यान देते हैं और लो प्रोफाइल रहने का कोशिश करते हैं। जब काम करने की बात हो तो जब हमने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर था, वहां से काम करने का जब काम कर रहा था वहां पे, तो दिन जब काम खत्म होने का जो कुछ समय मिलता था, उस समय में जो इंटरनेट था वो 1 GB मिलता था हमारा ये 30 डेज के लिए, तो उसको तो हम यूट्यूब कभी खोल ही नहीं सकते थे, तो इसलिए हम जाके जब ऑफिस में रहते थे, जब सारा काम खत्म हो गया, जब थोड़ा टाइम मिलता था उससे यूट्यूब से सीखिए सब काम करते थे, उसके बाद वहां से वापस आने के बाद में घर में मेरा एक कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर था जो 2 GB का था, उसमें मैं वीडियो एडिट करता था, उस पर एडिट करने के बाद में भी 3-4 दिन में पूरा एडिट करके, क्यों रेंडर में बहुत टाइम लगता है ना, तो काम करने के बाद मैं उसको रख देता था रेंडरिंग के लिए, रेंडरिंग भी आपका 2-3 घंटा लग जाएगा, तो उसको लिए वेट करते रहिए और जब 98%

0: 99% हो गया ना, आप जानते ही अरुणाचल का लाइफ को
1: खत्म
0: हो चला गया फिर वेट करो वापस से, फिर प्रोसेस शुरू करो, फिर लगाओ। तो लेकिन उसमें मैं कभी हार नहीं माना कि अगर मुझे 10 बार करना पड़े तो मैं करूं करके जो वो निकाल कर आया ना शायद, तो वो जो छोटा छोटा चीज है जो हार नहीं मानना वो ही मुझे यहाँ तक लेकर आया मुझे।
1: तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे?
0: अरुणाचल में वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर और भी बहुत सारे हैं, जो हमारे बेच से था अनुपम मेघा वो रोइंग से है, फिर अभी सलीना फिनिया जो ईगलनेस से, वो एक लेडी है वो भी निकल कर आ रहे हैं, शीतल डाको वो पाके के संग से है, वो अभी पाके टाइगर रिजर्व में काम कर रहे हैं, फिर हमारा मीरो ताको हो गया, फिर खांडू थंगन डिपेन, तो ऐसे बहुत सारा और भी बहुत सारे जो फेलो से ग्रीन हब से निकल कर आए वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो अभी जितना मैंने नाम लिया वो मोस्टली अभी हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं, कि अभी कभी यहाँ पे कुछ काम हुआ वहाँ पे काम हुआ तो मैं एक आदमी दो जगह नहीं जा सकता, तो उनको फोन करता हूँ यहाँ पे शूट कर दो यहाँ पे लेकर आओ, तो उस हिसाब से वो सारा काम और सारा एक साथ मिलकर काम करते हैं।
1: आप हमारे स्टूडियो में आए और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत सारे फौना एंड फ्लोरा और बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले, फिल्म्स देखने को मिले, और आशा करते हैं कि ये फिल्म्स विनर भी बने। तालो जी आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ये एक्चुअली थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए कि मुझे कहाँ से ढूंढ कर आप लेकर आ गए यहाँ पे बिठा दी, इसलिए आपको थैंक यू बोलता हूँ ऑल इंडिया रेडियो सारी टीम को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मुझे यहाँ पे आके कुछ तो बोल पाऊँ मैं ना।
1: अभी आप सुन रहे थे इन्फोटेनिंग प्रोग्राम, आज के मेहमान और आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे पॉपुलर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश श्री तालो एंथनी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: दोस्तों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का मेहमान, आपको बता दो कि अब आपके लिए पेश है खूबसूरत गीत फ्रॉम द फिल्म पुष्पा, गीत के बोल है श्रीवल्ली और इस गीत को गाया है जावेद अली ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत रब ने बना दी जौरी फिल्म से लव जंजा और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपको बता दूं कि अब से कुछ पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में।

0: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई

0: आई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers of NDA ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance NDA returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation, CBI, for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu

0: गीत संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

शायद अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी कारण एफएम है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। दोस्तों, कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आप सुन पाएंगे वो सुनहरे गाने 60s 20s की। जी हाँ दोस्तों, इस सेगमेंट पर मैं आपको ले चलूंगी उन पुरानी यादों की सफर की ओर, वो गाने जो आज भी खास है और जिंदा है। दोस्तों, पुराने गाने आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। उस दौर में ऑटो ट्यून नहीं था, असली आवाज और कंपोजिशन ही जान थी। तो चलिए, कार्यक्रम में पेश है पहला गीत फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के इस सेगमेंट पर आपको मैं सुनवाने जा रही हूँ एक फिल्म की गीत 1961 की जब प्यार किसी से होता है से। दोस्तों, ये फिल्म अपने दौर की एक बहुत ही चार्मिंग रोमांटिक फिल्म मानी जाती है। इसकी खास बातें ये हैं, फ्रेश रोमांटिक केमिस्ट्री, देव आनंद और आशा पारे की जोड़ी बहुत नेचुरल और स्टाइलिश लगी थी। इस फिल्म में देव आनंद का प्लेफुल अंदाज फिल्म का जान था। म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं, जैसे जिया ओ जिया, 100 साल पहले, तेरी जुल्फों से जुदाई। मोहम्मद रफी की आवाज में देव आनंद के स्टाइल को एक अलग ही चार्म दिया। दोस्तों, फिल्म में प्यार को शरारत, सिंप्लिसिटी और इमोशंस के साथ दिखाया गया था, बिना लाउड ड्रामे के। तो चलिए, पेश है कार्यक्रम में सबसे पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का टाइटल ट्रैक।

थोड़ा सा और सुन रहे थे कि लता मंगेशकर की आवाज में। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आरजे दांपा के साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में, और आप सुन रहे हैं गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म की गीत। जी हाँ, आपको बता दूं कि दोस्तों उस वक्त ये फिल्म काफी सक्सेसफुल और पॉपुलर हिट फिल्म मानी गई थी। इस फिल्म को ऑडियंस ने स्पेशली देवानंद के चार्मिंग स्टाइल, आशा पारेख की प्रेजेंस और मोहम्मद रफी के सुपर हिट गानों की वजह से बहुत पसंद किया था। 1960s में इसके गाने रेडियो पर बहुत चलते थे और यूथ ऑडियंस में देवानंद का क्रेज और बढ़ गया था। फिल्म कमर्शियली भी सक्सेसफुल रही और आज इसे क्लासिक रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म्स में गिना जाता है। तो चलिए, कार्यक्रम में फिर से आपके लिए पेश है इस फिल्म की ही गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। आपको बता दो कि अब आपके लिए पेश है गीत तीसरी मंजिल फिल्म से। गीत के बोल है ओ मेरे सोनारे और इस गीत को आवाज दी है आसा भोसले ने।

0: करे शोर।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दस अंतराल के बाद आप सबका फिर से स्वागत है और अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और हिंदी फिल्म गीतों के कार्यक्रम में आपके लिए पेश है पहला गीत किक फिल्म से। गीत के बोल है जुम्मे की रात और इस गीत को गाया है सलमान खान और पलक मुच्छल ने।

दोस्तों, आप सुन रहे थे गीत नीरज फिदा की आवाज में। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में, और अब आपके लिए पेश है गीत अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से, गीत के बोल ही तेरा होने लगा हूँ। और इस गीत का आवाज दी है अलीसा चिन्नी और अतीब असलम ने।

0: Marathwada, Rajasthan, and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-colored warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya, and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thundersquall with wind speed reaching up to 60 kilometers per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द सीबीआई जांच के आदेश हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद

0: की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126

0: सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीबीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए

0: ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमरीका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय

0: मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: शताब्दी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुणा एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ पलों में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपके लिए पेश है पहला गीत फिल्म जीत से। गीत के बोल है अभी सांस लेने की और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

से अब आपके लिए पेश है गीत अंजाम फिल्म से। गीत के बोल है बड़ी मुश्किल है और इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने। दोस्तों आपको बता दूं कि अंजाम को उसके डार्क साइकोलॉजिकल ड्रामा और इंटेंस परफॉर्मेंसेस के लिए याद किया जाता है। शाहरुख खान का नेगेटिव रोल, शाहरुख खान ने विजय अग्निहोत्री का ऑब्सेसिव और डेंजरस कैरेक्टर निभाया था। 1990s में हीरो का इतना डार्क रोल करना बहुत बोल्ड माना गया। माधुरी दीक्षित की पावरफुल परफॉर्मेंस, माधुरी दीक्षित ने सफरिंग रिवेंज और इमोशनल स्ट्रेंथ को बहुत इम्पैक्टफुली दिखाई। फिल्म का इमोशनल वेट लार्जली उनके कैरेक्टर पर था। फिल्म वन साइडेड लव और ऑब्सेशन के डेंजरस कंसिक्वेंसेस को इंटेंस तरीके से दिखाती है। दोस्तों इस फिल्म के कुछ फेमस गाने जो आज भी हिट हैं, जैसे बड़ी मुश्किल है चने के गीत में, उस वक्त काफी पॉपुलर हुए थे और आज भी पॉपुलर हैं। SRK के करियर के इम्पोर्टेंट पे शाहरुख खान ने अर्ली करियर में नेगेटिव रोल जैसे दर, बाजीगर और अंजाम करके अपनी एक्टिंग रेंज साबित की थी। फिल्म कमर्शियली बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन कल्ट फॉलोइंग और परफॉर्मेंसेस की वजह से आज भी काफी डिस्कस की जाती है। तो पेश है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में अंजाम फिल्म से ये गीत।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में. और हिट्स ऑफ 90s में आप सबसे पहले सुन रहे थे गीत अंजाम फिल्म से. आपको बता दूं कि अब आप सुन पाएंगे गीत कृष्णा फिल्म से. गीत के बोल है कोई कैसे मोहब्बत और इस गीत का आवाज दी है कुमार शानू और साधना सरगम ने.

0: दोस्तों आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद मिशन कमांड और तैनाती श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: हर पल रहते हमारे है साथ, क्योंकि ये कहते हैं।
2: दिस इज अप्पू गपक। टुडेज हेडलाइंस आर: President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Award 2026 to 15 nursing professionals. Union Home Minister Amit Shah extends greetings to the nation on the auspicious occasion of the great Sikh warrior Baba Banda Singh Bahadur Ji Sarhind Fateh Diwas. Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita meets Secretary of State for Culture, Arts and Heritage of Honduras Yasser Handalkar.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में सबसे पहला गीत पेश है अंधाधुन फिल्म से। गीत के बोल है लीला और इस गीत को गाया है अमित त्रिवेदी ने।

से सगी के बाद अब पेश है कीर शाहिद कपूर की नई फिल्म और रोमियो से। बस आपको बता दूं कि और रोमियो शाहिद कपूर की एक डार्क रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विशाल भारद्वाज ने दायर किया है। ये फिल्म पहले अर्जुन उस्तारा नाम से डिस्कस हो रही थी, बाद में इसका टाइटल और रोमियो रखा गया। शाहिद एक डेंजरस और इमोशनल अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर में दिख रहे हैं जो उनके हैदर और कमीने वाले इंडियन स्टाइल की याद दिलाता है। विशाल भारद्वाज और शाहिद रियूनियन दोनों पहले भी क्रिटिकली प्रेस्ड फिल्म्स दे चुके हैं कमीने हैदर रंगून, इसलिए ऑडियंस को इस फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर और विक्रांत मैसी है। फिल्म रिपोर्टेडली मुंबई माफिया वर्ल्ड और रियल अंडरवर्ल्ड इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। विशाल भारद्वाज के म्यूजिक और विजुअल्स को काफी प्रेस मिले। ऑडियंस रिएक्शन मिक्स रहे, कुछ लोगों को शाहिद की परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल लगी जबकि कुछ को फिल्म ज्यादा डार्क और स्लो लगी। तो पेश है और रोमियो फिल्म से गीत हम तेरे लिए अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं ये गीत और रोमियो फिल्म से, और ऐसे कुछ पलों में आप सुन पाएंगे वन चौशताब का समाचार, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग से पर समाप्त होते हैं।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि मेले में निबन आनी तारीख मंगलवार इप हंसों आजमबाजी पुनी मिनट मुख्य विषय के वांचो जायका पांग कपे पमा कहो पाई फाले वांग का वांग सुई अनि इंटरनेशनल नर्सेस डे नि चांगले बमा हया नि जांगपो ले मेले निबन आनी तारीख अनि फांग ए नर्स थम ए खनक मुका कुलक जिंग मोथो सजु मा मंगलु सांगो ताइक्या आसु अमै मोद सेट फो आचवाक आसन क्या नि मन मा चावनु म पांगनु तो यो आखा खले बांगले Haja ke zangpo maja ni them ang our nurses our future empowered nurses save lives le thamle boma Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu eta social media ka ho maja international nurses day ni man ma ho ke ka ho ma ma to yo chite le humanity hanpak ma moknu sa ngo taikya hanpak man nurses tham achok asan hu anto le Arunachal Pradesh ma kakhu lakjing motto satju ma nurse tham motasat hingham hai ham pho तोगजा सेन मा यो ए सतेपुले वनडे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ए अनि राष्ट्रपति भवन मा आंगोत असोकेट फंक्शन टू सो मा मिहोक बन आगा नर्सथम अंग नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 अवार्ड प्राइज कोतुनले बोमा होम अंग हाजा अवार्ड होम ए नर्सिंग मोरसत मा मोकसाक्या मोरसत आथकले यो आसु अमै हुक्या हानपक मा कोक्या चांगले kauma ajang baja award central here state government for union territories boma voluntary organization for to yo mongnu sango taikya registered nurses midwives auxiliary nurse midwives here lady health visitors tham makang a athak la asuwa mai nurse mod mokasa kya nurse tham ang ko ton zaile ta सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अनि ते लेले होथम आनीपा अंग आसम स्टेट चीफ मिनिस्टर अंग कामजिंग दवा मोमची अंग हाजा चीफ मिनिस्टर ऑफिस साउ गुवाहाटी खानापारा होनोय मक्या वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड मा अंगोत असोकेता सेरेमोनी तुसो मा आसम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ए असौले बोमा हाजा तुसो मा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोमा तबी यूनियन मिनिस्टर सिया बीजेपी होथम ए आपन अवंग क्या स्टेट फो चीफ मिनिस्टर थम यो हाका हेले बकले दुसो माजे बो मा डॉक्टर शर्मा फाइतम ले मिहक आली एमएलए रमेश्वर टेली अतुल बोरा चरण बोरो हिया आजंता नेओ अम अंगचु कैबिनेट मिनिस्टर सब असौले तावंग डिस्ट्रिक्ट मा रेनबो ट्राउट न्यासम मानजाई मोथो सजु मोकसा अंक्या होमोकोसत मो वनजे अंग अनि तावांग होनोय मता कंसल्टेटिव मीटिंग टू सो आसो अपोले बोमा आईसीएआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कूल वाटर फिशरीज रिसर्च हिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंक्या फिशरीज डिपार्टमेंट होथम नि आशमथम अंक्या ए अंगोत आसो क्या या टू सो मा खटका क्या होली अंग रेनबो ट्राउट न्यासम मानजाई अचन अचोंग अंक्या हिया रीजन मा हालक्या कोल्ड वाटर फिशरीज न्यासम होमोकोसत मखंग ए कपलो ले स्वाक अंक्या मुन कप सेनलोत लाप मो वनजेले कहोमा अजंग बाजे टू सो मा तावंग डिस्ट्रिक्ट अंक्या खाटुट मिर्बा बोंगलेंग औदुंग हिया खेतफिल नोक तोखंग ए मिहक सा तकु जो न्या सम्मान जामि थम हका हेले

लोग सब प्रस्तुत है हिंदी फिल्म में गीतों का कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और कार्यक्रम में पेश है पहला गीत दो का फिल्म संगीत के बोल है रोयारे और इस गीत को गाया है सिरज उप्पल ने।

0: दोस्त इसी के साथ ही फिल्मी गानों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दो मिसमई श्रोताओं का समाचार। वंश श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ईद ओ मिसमी कार्यक्रम।
1: ऐसा आकाशवाणी ईटानगर शोला पुची जिहुलुनी आंड्रोलेनी एतानी ईद मिसमी आहोला के जी धर्गालम्ब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में ओना मैं दिल्ली माचे राष्ट्रपति भवन माने होलोमा नर्स आलम्ब्र है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड आपिया बदा आहोगा ऐसा अवार्ड है मिंगी अतु तेवमा प्राणबान जोया स्टेट दोने यूनियन टेरिटरी आतिमामा रजिस्ट्रार एला नर्स जे एन एम एन एम दोने लेडी हेल्थ विजिटर आलम्ब्र हागा यता दाता आतिका एम माचे नर्स आलम्ब्र में मिंगी अतु तेगा चिपुआ एतानी इंटरनेशनल नर्सेस डे इनी एनागा इनिची नर्स इनिची एवे योफु असला नर्स आलम्ब्र में इमुयो फुबुगा थोपुमाला ताचिगने एतानी इंटरनेशनल नर्सेस डे इनी एनागा महो नर्स आलम्ब्र में जीव हाहा जोगेने आदिकाची इमु बिगा में तांदो प्रावजिदा ने अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में लगातार आओगा बुनी लीनाबा असम चीफ मिनिस्टर सगा हिमंता बिस्व शर्मा है गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य में ओना गुवाहाटी खानापारा आदिकोची वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड माने लासे आथगामा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इकिशा यूनियन मिनिस्टर आलम्ब्रो दोने बीजेपी चीफ मिनिस्टर आलम्ब्रोबा ला होगा शर्मा ब्रम्ब्रो इकिशा लासे हागा बा मिनिस्टर आलम्ब्रमा रमेश्वर तेली अतुल बोरा चरण बोरो दोने अजंता नियो खेप्रादा ला होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में CSR को माने आमे हाई ने वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट बोंदिला तिकोचे बुडा स्टेडियम मा माने स्मार्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड आज तेगा बचे दिरांग MLA पुरपा सिरिंग में बोनी आय पहा बदा आहोगा गवर्नमेंट ची स्कीम पॉलिसी दोने प्रोग्राम दो आ बोर्ड माने अतिकाची मूला तिकोचा आज तेला बोर्ड आय पहुमा MLA कानी सत्यन चौंबे ने तेंजिंग निमाग्लो DC डॉक्टर दिलीप कुमार दोने किसा मुह खो दिगा बदा ला होगा तवांग अतिका मा जिसीमा ईगा आंगापी एठो चिपो ओना ICAR माचे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च दोने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट माचे फिशरीज डिपार्टमेंट में मीटिंग अखगा मा खारतूत मिर्बा बोंगलेंग औदोंग दोने किट फेल आतिकोची अन्यू आंगनवा खाया में गिगा बदा ला होगा गवर्नमेंट स्टाफ आलम्ब्रो में ऐचा होली बा प्रा एने खाजीन जगला उतोगे ने अब प्रा जो एजी ना ने अरुणाचल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन माचे मेंबर हेंतो कारगा में बुनी अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट यिंगथोंग आतिकोची DC ऑफिस माने मीटिंग अखगा माचे चाय बम हो लाई बदा आहोगा गवर्नमेंट स्टाफ आलम्ब्रो में आतिकाची इमुगे बने जवाचा गवर्नमेंट गाने अलाउ पाऊ ग्रगा जी चाहूगे ने कायू खांगा अरुंगा तु छंगा ने मुझे जोजी ना ने कारगा में लाओ बदा आहोगा तवांग दिशी नामग्याल आंगु में बुनी DLMC मीटिंग चीन का महो तवांग डिस्ट्रिक्ट आतिका कोकोमाचे जोगा प्रोजेक्ट दो चिपो अथुसु बदा आहोगा डिपार्टमेंट आलम्ब्रो में प्रोजेक्ट दो मालोन जोगा भी ने जीपो तेला कोको महो अजेंदो ची ना ने दिशी में लगाने प्राने अजितेंदो लामी प्रोजेक्ट दो डिपार्टमेंट आलम्ब्रो में कॉन्ट्रैक्ट जयागा ने ग्राजीम ना लाते ओ बदा आहोगा जांग NDC दो ने लोमला लाप्रागे किसा सीओ हेडक्वार्टर मामाचे आजालम्ब्रो में आ मीटिंग मा गिगा बदा ला होगा नेशनल TV एलिमिनेशन प्रोग्राम कोकोमा ने बहा खुंसा रामकृष्ण शारदा मिशन मा आज ठुगारू सुनाली देवरॉय ने इंजीनियर रोयकिम ताइकाम मैम बुनी खुंसा जनरल हॉस्पिटल तामकोमा चे TV मिंगी होलोके तोतेगे ने हाथुमुप्रा हाचिगा बदा आहोगा निक्षय मित्रा कोकोमा ने आ मिंगी प्रगानाबा

0: Arodala ne chakanyime alige mingi to tega bage bane inti pidone health department ma chime tando prauga jidane diamo doctor B Ratan me lagata ahoga Lower Subansiri district police ne jiro atikachi galo welfare society mem aroga gane buni jiro atikachi gyati taka journal general hospital tamako mane iu chane gala da la hoga jiro atikachi galo welfare society haro president sarubane shiva doctor minge loi wala mane ali iu changa jida la hoga etani si idumishmi aho ali mao dabai echa akaswani itanagar dibrugarh nali idmishmi program ma echamta ashe aro so khya ma ho etani hendo mamta melone ani mena me ashe bega ji ji
1: दोस्तों भी आप सुन रहे थे इदुमिस में श्रोताओं का समाचार। इदुमिस में श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी करुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, समाचारों के बाद अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश है गीत काइट्स फिल्म से, जिसे आवाज दी है के बोल है दिल क्यों ये मेरा।

तो दोस्त आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अब से कुछ पलों में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। श्रोता हमारे से दूसरे प्रसारण सभा में हमारे साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। और अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंभा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस खास सफर यानी कि तीसरी प्रसारण सभा का सफर ठीक 4:27 पर शुरू हो चुका है। इस खूबसूरत सफर को आगे ले जाने के लिए मैं आप सभी के रेडियो साथी आरजे नूरी स्टूडियो में पहुंच चुकी हूं और इस प्रसारण सभा को सुचारू रूप से आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है प्रसारण अधिकारी एल ताली जी तथा तकनीकी अभियंता ताना आदम जी, जिनकी मेहनत और सहयोग से ये सफर और भी शानदार बनता है। दोस्तों इस सफर को आगे बढ़ाने से पहले हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे आरजे दंपक को, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज और शानदार लहजे के साथ दूसरी प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाया और अब बड़े प्यार से स्टूडियो की जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। तो चलिए दोस्तों इसी प्यार और अपनापन के साथ शुरू करते हैं एक और सुहाने सफर की, जहां हर पल होगा खास, हर बात होगी दिल के करीब और इस सफर की पहली मंजिल है गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

जिंदगी के फलसफे और दिल को छू लेने वाली कहानियां सिर्फ आपके लिए, सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रोज की तरह। तो बैठ जाइए आराम से और चलिए शुरू करते हैं समाचार सारांश यानी कि न्यूज हेडलाइंस। पहले कुछ जरूरी खबरें, आज 12 मई की कुछ खास खबरें, इतिहास। सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौना मेन ने एनएचपीसी को बधाई दी। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के यूनिट 4 के सफल कंपेंशनिंग पर यह प्रदेश की बिजली जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंचायती राज आवास ऑल अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज परिषद ने रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी को एक प्रतिनिधि मंडल भेजा ग्रामीण विकास कर्मचारियों के वेतन संशोधन की मांग पर। ग्रामीण आवाज आज भी बुलंद है। नीलोक के सैनिक स्कूल के 2 कैडेट्स ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए की परीक्षा पास की। प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है। अब कुछ खबरें पूरे देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर देश की साइंटिफिक स्ट्रेंथ और सेल्फ रिलायंस का जश्न मनाया और पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की याद में देश को संबोधित किया। बढ़ती वेस्ट क्राइसिस और तेल कीमत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम, विदेशी यात्राओं से बचने और फ्यूल बचाने की अपील की। देश में आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत करते हुए उन्होंने ये देश के नाम संबोधित किया। दिल्ली से लखनऊ का सफर सिर्फ 2 घंटे में। वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत ये सपना जल्द सच होने की उम्मीद है। देश के भविष्य

तो श्रद्धा दोस्तों ये थे इतिहास समाचार पत्रों के हवाले से न्यूज हेडलाइंस। तो चलिए चलते हैं एक खूबसूरत गीत की तरफ।

तो श्रोता उसने इवनिंग गुड इवनिंग ईटानगर में ये गीत बेहद ही खूबसूरत गीत सिर्फ आपके लिए आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कहते हैं ना कि एक अच्छा गीत आपकी जिंदगी के हर गम को और हर दर्द को मिटा देता है। और उम्मीद करती हूँ कि इवनिंग का ये यानी कि इस शाम का ये सफर शुरू होते ही हमने आप तक पहुंचाई ये खूबसूरत गीत। और उम्मीद करती हूँ कि आपका शाम ऐसे ही खूबसूरत सिलसिले से चलता रहेगा मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में और अब वक्त हो चला है आप और हम मिलकर पलट ले इतिहास के पन्ने। दोस्तों हर दिन इतिहास का एक नया सफा खुलता है और आज 12 मई का दिन भी कुछ खास घटनाओं का गवाह रहा है। चलिए पलटते हैं इतिहास के कुछ यादगार पन्ने। 1820 में नाइटिंगल यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म आज ही के दिन इटली में हुआ। वो महान महिला जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी। उनकी याद में आज इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। शुक्रिया उन तमाम नर्सेस को जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं। 1967 लेजेंडरी गिटारिस्ट जिमी हेंड्रिक्स का पहला एल्बम यू आर एक्सपीरियंस आज ही रिलीज हुआ था जिसने रॉक म्यूजिक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। संगीत की शक्ति का एक नमूना ये भी था और आज भी हम उनको याद करते हैं। 1908 आज ही के दिन नाथन बी सटलफील्ड को वायरलेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का पेटेंट मिला यानी रेडियो के जन्म की बुनियाद। और देखिए उस एक खोज की वजह से आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि दिल की बात आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके दिल की बात भी हम सुन पा रहे हैं। 2008 चाइना के सीशुआन में एक भूकंप आया था जिसमें हजारों लोग काल के गाल में समा गए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के आगे हम सब एक हैं और आपस में मिलकर खड़े रहना ही सच्ची इंसानियत है। चलिए इसी के साथ ही आपको लिए चलते हैं एक और गीत की तरफ।

दोस्तों, इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हम कभी कभी एकदम से रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। ऐसे में आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर उनकी एक सोच याद आती है, सेवा ही सच्ची पूजा है। जब आप किसी दूसरे के लिए जीते हो तब आपकी जिंदगी का असली मकसद मिलता है। सोचिए दोस्तों, हम रोज कितने लोगों के लिए कुछ करते हैं। एक हंसी, एक मददगार हाथ, एक सच्चा अच्छा शब्द, ये छोटी छोटी चीजें दुनिया को बेहतर जगह बना देती है। जिंदगी का फलसफा सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं, छोटी मोहब्बतों में ही छुपा होता है। और इस सोच के लिए आज का ये दूसरा गीत जो सीधे दिल को छूलेगी, चलिए मेरे साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में।

0: आखिरी गीत को सुनते सुनते आपको याद दिला दूं कि कुछ ही पलों में हिंदी, अंग्रेजी तथा नोक्ते भाषाओं में आप समाचार सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से।
1: कुछ भी नहीं रहता दुनिया।
2: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी नर्सों के प्रति उनके समर्पण, करुणा और मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला स्थित बुद्ध स्टेडियम में स्मार्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड का उद्घाटन। ये बोर्ड एसबीआई बोमडिला द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर पहल के तहत प्रायोजित। हिमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
3: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए हैं। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और समर्पण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर वर्ष 12 मई को दुनिया भर में नर्सों और स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी नर्सों के प्रति उनके समर्पण, करुणा और मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि अस्पतालों से लेकर दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों तक नर्सों का योगदान अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान है। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला स्थित बुद्ध स्टेडियम में स्मार्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड का उद्घाटन विधायक फोर दिरांग फुरफा शेरिंग द्वारा सोमवार को किया गया। यह बोर्ड एसबीआई बोमडिला द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर पहल के तहत प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक संदेशों को डिजिटल माध्यम से प्रभावी रूप से प्रसारित करना है, जिससे जन जागरूकता और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम में विधायक शेतेन चौम्बे, तेंजिंग निमाग्लो, वेस्ट कमिंग उपायुक्त डॉ दिलीप कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉ शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नियोक, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोरेन पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरा शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री

0: और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंत बिस्वा सरमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि श्री सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 76,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा है कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर बनाने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। राज्य पुलिस सीबीआई को केस डायरी सौंपने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, साथ ही सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना जताई गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने का येलो जारी किया है। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहराने की अनुमति दी है, जबकि वह इस खबर से ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडस ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका को पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: ARPA team बनाने का आर नर्सेस आर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेस सेफ लाइफ जाओ अरे का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मारे रंगवो को मत्तो नर्स नंग थिंग डेडिकेशन कंपैशन ले मिन्यान है नंग सरप्लस सर्विस बच्चों को था डंको अपा चोचो ना वाजा अरे को खांडू में सोशल मीडिया पोस्ट ने मा नर्स हॉस्पिटल पर मा हा डांगवा हेल्थ केयर सेंटर्स नंग नर्सेस से अरुणाचल हेल्थ केयर सिस्टम है बैकबोन जोंगा ममिन चोटो को बाजा खपो बीजेपी लीडर हेमंत बिश्व शर्मा पा लोनी रंग थजा आसाम चीफ मिनिस्टर रंग ओठ पवन बाजा अरे को गुवाहाटी खानापारा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मा डॉक्टर शर्मा नंग ओर ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी पवन ठू बाजा अरे को डॉक्टर शर्मा दम को वाबली एमएलए रमेश्वर तेली अतुल बोरा चरण बोरोले अजंता नियोखे कैबिनेट मिनिस्टर रंग स्वरिन होन बाजा अरे को अरे प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अहन यूनियन मिनिस्टर्स बीजेपी में पन्ने का स्टेट्स व चीफ मिनिस्टर से डांग बाजा वनबली दिरंग एमएलए फुरपा सेरिंग मा मजा बॉम्बी लगा बुद्धा स्टेडियम को स्मार्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर लुसिट को बाजा अधिकारी बोर्ड पर एसबीआई बॉम्बी ला हेमा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर खन को डिजिटल ने मिन्यान है नंग गवर्नमेंट स्कीम ले प्रोग्राम है नंग चुजट्ठुक रंग थमला मा लोगा बाजा अधिकारी लुसिट प्रोग्राम को एमएलए सीटेन चौम्बेल तेंजिंग निमे ग्लोडम को डिप्यूटी कमिश्नर वेस्ट कमेंग डॉक्टर दिलीप कुमार ले अहन डोंगलांग हेमिन डांग बाजा नाम चुजट्ठुकेगा अरुणाचल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन मेंबर हेंटो कारगाम मामजा इंक्योंग डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल को मोंग पठुन बाजा अधिकारी मोंग ठुनटा पा डिस्ट्रिक्ट नंग पब्लिक है नंग सर्विस स्कूल गवर्नेंस पा मरो मा संसित मिंगा है नंग थोमिन बाजा अधिको कारगाम मा टेक्नोलॉजिकल एडवांस डंग डिकमिन एडमिनिस्ट्रेटिव है चमजो रे किंगा मा मिन चोटो को बाजा अधिको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मा ट्यूब सिस्टम को असन ट्रांसफॉर्मेशन ले मॉडर्नाइज हुन रंग वारम मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पर जो होने का नाम मिन चोटो को बाजा डिप्यूटी कमिश्नर तावांग नामगेल अंगमो ममजा डिस्ट्रिक्ट व डेवलपमेंट का रकाम है प्रोग्रेस पर जे एजट रंग डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी गो पठुन बाजा अली गो ठुनटा को मत्तो काम है जे एजट वाले काम मोटे है नंग काम है मत्तो अंग सिंथम थम ताहुन रंग चोटो को बाजा अली गो काम सिंथम थम मा डंग है मोटे एजेंसी व मथा रंग में चोटो को बाजा नाले गो ठुनटा को एडीसी जंग लुंगला ले अहन एडमिनिस्ट्रेटिव डोंगलांग है डंग बाजा नाम जो चोजा ठुकेगा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम खान को आरके शर्दा मिशन खोंसा को वीवा अलुमनाई सोनाली डेब्रोयला ईयर रोयकिम ताइकमनी मा छिवा टे टीबी खोंचत टे जो तुन कबे का अधिको निक्षय मित्र इनिशिएटिव खान को अरे तुन कब रेता टीबी खोंचत टे नंग खोंसा जनरल हॉस्पिटल को परिवार बास्केट बच्चों को बाजा अधिको डीएमओ डॉक्टर बी रतन मा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ले हेल्थ डिपार्टमेंट ने वा सोनाली डेब्रोयला ईयर रोयकिम ताइकमनी नंग डंको अपाचो जोना बाजा लोअर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले गालो वेलफेयर सोसाइटी जीरो यूनिट है ममजा ग्याटी टक्का जोनल जनरल हॉस्पिटल जीरो को वॉलंटरी हेको कैंप होन बाजा एडिकर प्रोग्राम पर गालो वेलफेयर सोसाइटी जीरो यूनिट प्रेसिडेंट रीटवन डॉक्टर मिंगे लोई वनिंगिक रिक एनिवर्सरी रंगो जाको होनमान होन रंग पैन अरुणाचल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रोग्राम पाच जाओ मजा चोटो को खबर अतो कजो लाथोन मंगत
1: अरे खबर से।

0: program ko. Chani ama bo waro nya se chotat mangan.
1: गीत संगीत
2: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
1: प्यार भरे अल्फाजों में
2: दिल से दिल की बात
1: बस आपके नाम
2: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम।
3: आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी अंग्रेजी तथा लोकप्रिय भाषाओं में समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर। और सफर में मैं हूँ आप सबके साथ रेडियो साथी आरजे नूरी। दोस्तों 5:05 हो रहे हैं और इसी के साथ ही हम चलेंगे इवनिंग ड्राइव पर। जी हाँ, शाम हो गई है और वक्त अब हो चला है। ऑफिस के बाइले बंद होती है और गाड़ी स्टार्ट होती है और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर हो जाता है। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जब आप घर लौट रहे हो, सफर में अकेले हो या साथ आपका कोई मनपसंद साथी आपके बगल में बैठा हो, इसी के साथ ही आप सबके साथ मैं भी चल रही हूँ सफर पर, इवनिंग ड्राइव पर। और इसी के साथ ही अगले कुछ मिनट हम सफर सिर्फ आप और आपके बगल वाला नहीं बल्कि मैं भी रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इवनिंग ड्राइव आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम के साथ।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं।

दोस्तों, ऑफिस के थकान के बाद आपका ये जो सुहाना सफर है आपके घर तक का, ये कुछ मिनट सिर्फ आपका है। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस आप पर यह सड़क और हमारी बातें, यानी हमारे दिल की बातें गीतों के माध्यम से। दोस्तों, आज की शाम की शुरुआत होती है एक ऐसे गाने से जो आपके कंधों से थकान उतार दे, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद पहला गाना हमेशा आपके नाम होना चाहिए। लीजिए ये खूबसूरत गीत आपके नाम।

तो इवनिंग ड्राइव की शुरुआत हम इस खूबसूरत गीत के साथ कर चुके हैं। कहते ना, जिंदगी में अगर साथी अगर मन पसंद हो तो सफर यूं ही कट जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने बगल में जो भी इंसान इस वक्त सफर में साथ दे रहा हो या जिंदगी का साथी भी हो, तो उसे जरूर थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी जिंदगी इतनी आसान और इतनी स्मूथ तरीके से, यानी कि हमारी जिंदगी का सफर ऐसे आसान हो जाता है, ऐसे स्मूथ हो जाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन साथी को, अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा या कोई भी ऐसा साथी जो आपकी जिंदगी को आसान बनाती हो, उनको जरूर थैंक यू कहें। तो इवनिंग ड्राइव में चलिए चलते हैं, सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

और आकाशवाणी के RNFM 103.1 MHz पर हमारी कोशिश भी यही रहती है कि अगर आप थकान महसूस कर रहे हो, अगर किसी झुंझलाहट में हो, जिंदगी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो थोड़ी देर हमारे साथ बातें कीजिए दिल से दिल की बात और सुनिए दिल की बात गीतों के माध्यम से और बस सारे गम भूल जाए कुछ पल के लिए। और इस वक्त मैं हूँ आप सबके साथ दिल की बात करते हुए आरजे नूरी और चैनल है आप सबका बहुत ही चहेता चैनल आकाशवाणी का FM 103.1 MHz RNFM और कार्यक्रम है इवनिंग ड्राइव। चलिए इवनिंग ड्राइव में चलते हैं और सुनते हैं एक बेहद ही खास खूबसूरत गीत।

यूं ही आप सबसे बातें करते करे करते मैं सोच रही थी कि हम इतनी भागदौड़ में रहते हैं कि कभी कभी रुककर खुद से पूछना भी भूल जाते हैं कि आज का दिन कैसे गया। नहीं, मेरा मतलब सच में काम कैसे गया वो नहीं, बल्कि यह कि आज आपने ऐसा कुछ देखा क्या या सुना या महसूस किया जो आपको अच्छा लगा। मुझे तो मिल गया वो बच्चा छोटा सा जो अपना काम छोड़कर मेरी मदद के लिए वो बैठ गया। वो ये भी भूल गया कि वो शायद खुद समय पर अपनी मंजिल नहीं पहुंच सकता था, लेकिन वो मेरी मदद के लिए बैठ गया। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, एक पल के लिए स्टीयरिंग व्हील से ध्यान हटाए बिना सोचिए कि आज के दिन अब तक आपने ऐसा क्या महसूस किया, क्या सुना या क्या देखा जो आपको सच में अच्छा लगा और आपके दिल को छू गई। हाँ, बस एक चीज, क्योंकि अब तक सुबह से लेकर अब तक आपने कई सारी चीजें आपने खुद की होंगी, आपके साथ हुआ होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा, बस एक ऐसा अच्छा चीज जो आपको सच में हैरान कर गया हो या आपके दिल में खुशी पैदा कर गई हो, मिली क्या कुछ? तो आज की शाम या ये अगला जो गीत है वो उसी अच्छी चीज के नाम, और अगला गाना भी उसी के नाम, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो या कोई ऐसा थॉट जो आपके मन में खुशी पैदा कर गई हो। लीजिए सुनिए अगला गीत।

ऐसे प्यारे ख्याल के साथ और ऐसे खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन सफर अभी जारी है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और सफर में आज आप सबके साथ मैं हूँ आरजे नूरी। जिंदगी की बातें गीत गानों के साथ और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ मेरे साथ बनी रहेगा 9:30 तक आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां हम करेंगे दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। चलिए महफिल सजाते हैं अगले सेगमेंट के साथ, यानी शाम के महफिल के साथ। और दोस्तों शाम के महफिल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म गुजारिश के कुछ हसीन नगमे। तो चलिए बढ़कर सुनते हैं बैक टू बैक फिल्म गुजारिश के कुछ हसीन नगमे।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे थे फिल्मी गाने। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्मी गाने। और आपको बता दूं कि 6:30 पर आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार, और कुछ पलों के बाद यानी कि 6:35 पर हम फिर से लौट कर आएंगे आज के कलाकार कार्यक्रम के साथ। और 7 का समय रहेगा निशी श्रोताओं के समाचार का। 7:05 पर हम फिर से वापस लौट कर आपके साथ फिल्मी गानों के सफर पर चलेंगे। 7:35 पर आप सुन पाएंगे आपका बहुत ही चहेता कार्यक्रम हेलो फरमाइश। और 8:20 पर फिर से चलेंगे फिल्मी गानों के सफर पर। श्रोता दोस्तों, ये थे कुछ ही पलों में आप तक पहुंचने वाली कार्यक्रमों की एक छोटी सी झलक। आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गानों का यह सफर मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के RNFM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता दोस्तों, आपको लिए चलो आकाशवाणी के स्टूडियोज की तरफ आदि श्रोताओं के समाचार के लिए। लीजिए सुनिए ये आखिरी गीत हिंदी फिल्मी गानों के सफर में।

आकाशवाणी के ईटानगर द्वारा प्रसारित आदि श्रोताओं के समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं। आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से, और मैं हूं आपके साथ आरजे नूरी। श्रोता दोस्तों,

सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस कलाकार की जिसने गरीबी, संघर्ष और तकलीफों से लड़ते हुए लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरी। जी हाँ, आज की ये प्रेरणादायक कहानी है जगदीप यानी सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी की, जिन्हें दुनिया प्यार से जगदीप के नाम से जानती है। श्रोताओं, 29 मार्च 1939 को दांतिया मध्य प्रदेश में जन्मे जगदीप का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता स्थानीय महाराजा के वकील थे, लेकिन जब जगदीप महज 7 या 8 साल के थे तभी पिता का साया सिर से उठ गया। परिवार पहले कराची चला गया, लेकिन 1947 के बंटवारे के दौरान फैली हिंसा ने सब कुछ बदल दिया। अपना घर छोड़कर परिवार को वापस बॉम्बे यानी आज की मुंबई आना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का असली सफर। फुटपाथों पर रातें बिताना, पुलों के नीचे सोना, बेकरी से बच्चे टुकड़ों से पेट भरना और छोटी छोटी चीजें बेचकर घर चलाने में माँ का हाथ बटाना। उनकी माँ एक अनाथालय में खाना बनाती थी और छोटे जगदीप ट्रेनों और गलियों में सामान बेचते थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं, उसे मजबूत बनाती है। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी किस्मत ने करवट बदली। फिल्म निर्माता बी आर चोपड़ा की फिल्म अफसाना के लिए बच्चों की तलाश हो रही थी और वही जगदीप को मौका मिल गया। थिएटर में ताली बजाने वाले छोटे से सीन के लिए उन्हें मिले थे सिर्फ 3 रुपए, यानी कि वही 3 रुपए उनके सपनों की पहली कमाई बनी। इसके बाद उन्होंने मुन्ना, अब दिल्ली दूर नहीं, हम पंछी एक दाल के जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। फिल्म पंछी एक दाल के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के को सम्मानित भी किया था। धीरे धीरे जगदीप ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। 2 बीघा जमीन, आर पार, 3 बहुरानिया और जीने की राह जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। लेकिन दोस्तों, अगर जगदीप का नाम लिया जाए और शोले का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी हो जाएगी। फिल्म शोले में उनका निभाया किरदार सुरमा भोपाली आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका मशहूर डायलॉग हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, आज भी सुनते हैं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और इस वक्त भी जब मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ, आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान फैल गई होगी और जगदीप जी के हर किरदार आपके चेहरों के सामने फिल्म की तरह और फिल्म के रील की तरह आंखों के सामने तैर चुकी होगी। दोस्तों, यह किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि 1988 में उन्होंने खुद फिल्म सुरमा भोपाली डायरेक्ट की। श्रोताओं, जगदीप ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि 5 फिल्मों में हीरो के रूप में भी नजर आए थे। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो जगदीप ने 3 शादियां की। दोस्तों, सफर में हम आगे भी बातें करेंगे जगदीप जी के जिंदगी पर आज के कलाकार कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए उनके फिल्म का ही एक बेहद खूबसूरत गीत।

अच्छा तो पहली शादी नसीम बेगम से हुई जिनसे उन्हें बच्चे हुसैन, शकीरा, शफी और सुरैया हुए। दूसरी शादी सुग्रा से हुई और इसी रिश्ते से जन्मे मशहूर कलाकार जावेद जफरी और नावेद जफरी। तीसरी शादी नजमा से हुई जिनसे उनकी बेटी मुस्कान हुई। लेकिन जिंदगी ने उन्हें दुख भी दिए। उनके बेटे हुसैन का 2009 में निधन हो गया। उसने जगदीप को अंदर तक तोड़ दिया। दोस्तों, जगदीप सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो संघर्ष से जीतने की एक मिसाल थे। फुटपाथ से फिल्मी दुनिया तक का उनका सफर यह सिखाता है कि अगर हौसले मजबूत हो तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल इंसान को रोक नहीं सकती। उन्होंने 1990s तक फिल्मों

में काम किया और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। आखिरकार 8 जुलाई 2020 को मुंबई में 51 साल की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी हंसी, उनकी अदाकारी और उनका सुरमा भोपाली वाला अंदाज आज भी लोगों में जिंदा है। मैं हूं आप सबके साथ आरजे नूरी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ईटानगर के एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ अरुण एफएम पर आज के कलाकार। और आज के कलाकार में जगदीप साहब को याद करते हुए आपके चेहरों पर जरूर मुस्कान खिल गई होगी। और मकसद हमारा यही है, जिंदगी में मुश्किलें जितनी भी आए उसे डट कर सामना कर चमकता सितारा बने, यही सीख आज के कलाकार जगदीप साहब से हम सीख सकते हैं। चलिए श्रोता दोस्तों, आगे और सुनते हैं उनके ही फिल्म के कुछ हसीन लम्हे में।

0: साहब आनंद उठा रहे थे जगदीप साहब के कुछ फिल्मों के हसीन नगमे मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार में। दूसरी सक्रिय गीत के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पे समाप्त होता है। कुछ ही पलों में श्रोता दोस्तों आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे निशी श्रोताओं का समाचार। मुझे इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते बस इतना याद रखिए, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान मुस्कुराना न छोड़े तो हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदल ही जाता है। और शायद यही सीख हमें दे गए जगदीप साहब, जिन्होंने अपने दर्द को भी लोगों की हंसी बना दिया। दोस्तों तो फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार की कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, लेकिन हमारे साथ बने रहिए आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको फिर से याद दिला दूं कि अब हमारे साथ
1: सी आकाशवाणी इधर पोको में तान मलम आलो मेला कोनो सला लेचिर पोल ग आलो लोर ग आलो लोयना ने पोल ओरोम ग कन बाजे रे में मलम कुमन सला ताग दु तान ग द ताचो ब निसी पुयम तपा मारे मतलब निसी में मनम तराज सीधा बानो आगुम बा

아부 다니게 구응해 아뚜냐 야게 구응해 하리 하링 하궁 오게 하잉.

ये आकाशवाणी का आरएन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और सफर में मैं हूँ आप सबके साथ रात 8 जनवरी। दोस्तों चलिए चलते हैं निशी श्रोताओं के कार्यक्रम के बाद सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। शुरू करेंगे इस तरकते भरकते खूबसूरत गीत के साथ।

0: श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के FM 103.1 MHz अरुण FM पर आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों, संगीत का ये खूबसूरत कारवां अब बढ़ चला है और एक और दिलचस्प पड़ाव की ओर। दोस्तों, जहां गुंजेगी आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपकी दिल से भेजी गई फरमाइशें। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz पर अगला कार्यक्रम है आप सभी का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। तो बने रहिए आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 MHz पर, क्योंकि ये गीतों, किस्से, कहानियों और देश दुनिया के ताजा तरीन खबरों का संगम है अरुण FM 103.1 MHz।
1: हेलो फरमाइश
2: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
2: अमल जी, फिर से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। बागान पे काम करते करते आपके साथ बातचीत हो पाए, बहुत खुशी लग रहा है।
2: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बागान में तो अभी ठंडी होगी।
1: हाँ, पहले तो बारिश हुआ था।
2: अच्छा अच्छा,
1: अभी बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, ठंडा।
2: ओके, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना। बढ़िया
1: जी जी जी।
2: ओके, बढ़िया मौसम। और कौन कौन है साथ में?
1: और साथ में मेरा भाभी है, सासू माँ है और तीन बेटियां है।
2: ओके, सभी मिलकर के काम करते हैं बागान में।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: ओके,
1: मेरे भैया का सासू माँ है अभी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, काफी सारे लोग हैं।
1: हाँ हाँ।
2: अच्छा, वो लोग भी रेडियो सुनते हैं क्या?
1: तोड़ रहा है।
2: अच्छा अच्छा, वो लोग रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ हाँ हाँ, मैं रेडियो लगा देता है ना।
2: अच्छा,
1: दोस्त लोग सुनता है, सभी घर वालों ने सुनता है।
2: ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया
1: जी। और वहाँ का मौसम कैसा है, थोड़ा बताइए।
2: हाँ, यहाँ पे मौसम बढ़िया है। रात को बारिश हुआ था, अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है
1: जी। हाँ, मेरा एक फरमाइश था
2: जी। हाँ बताइए।
1: तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर फिल्म का जो दिल सुनता है गाना है ना, उसको सुनना है।
2: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ?
1: क्या बात में है, उसको सुनना है।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: और
2: जरूर।
1: हमारे दोस्तों को याद कर लेता हूँ।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: सब

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। अरे वगैरह साहब, शारदा सुप्रीम, प्यार नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से शारदा प्रसाद जी।
1: जी निसंदेह आपने हमें सही पहचाना
0: जी।
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश की आरणी वगैरह साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर।
0: जी जी जी जी हमारे प्रिय श्रोता शारदा प्रसाद जी जो हमें काफी अच्छी जानकारी देते हैं
1: जी। जी धन्यवाद।
0: जी जी जी और आज कहिए कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: मौसम तो आज काफी गर्म हो रहा है, तापमान लगभग 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड के अभी है हो गया है और शाम तक ये तो तापमान और कुछ बढ़ जाएगा, 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा।
0: जी जी
1: रात
0: जी,
1: में 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड का मिनिमम रहता है।
0: ओके रात को मौसम थोड़ा ठीक ही रहता है।
1: जी जी।
0: ओके और कुछ नया कुछ चल रहा है वहाँ पे सुनाइए मथुरा में?
1: नया इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा है, गर्मी के मारे हाल बिहार पर्यटक भी बहुत कम आ रहे हैं और श्रद्धालु भी सुबह सुबह जो जाते हैं तो मंदिर अपना दर्शन करके आ जाते हैं।
0: तो बेहतर है घर पे ही रहें और हमारा कार्यक्रम सुनते रहें।
1: जी बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है। आकाशवाणी से जुड़े रहिए, सूचना शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुनते रहिए और लू से भी बचने का अपना एक माध्यम है। हम आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें लगने की कोई समस्या नहीं होगी। इससे काफी गर्मी हो रही इसलिए घर के अंदर कार्यक्रम को

0: जी
1: और आनंद पूर्वक जीवन यापन करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शारदा प्रसाद जी। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: छेड़ मिलन के गीत रे मित्रवा, छेड़ मिलन के गीत, ये गीत सिंहशेष नाग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आकाशवाणी ईटानगर।
0: जी जरूर सुनाएंगे, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा सुरीला गीत है, मैं सर्वप्रथम अपने परम मित्र आदरणीय वाघरा साहब को श्रद्धा समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और हमारे मित्र हैं सर्वश्री अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेन्द्र वर्मा है, राजू यादव जी हैं, साथ में राकेश कुमार जी हैं, अर्जुन प्रधान है, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ शर्मा जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और विजय कुमार पांडे हैं, केशव प्रसाद शर्मा जी, विद्यारत्न शर्मा, टेकचंद अग्रवाल भैया, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर को सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: सभी को समर्पित करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा प्रसाद जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहे। सुनते हैं आपके पसंद का गाना
1: जी, हृदय धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो,
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जगदीश राय गर्ग जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाइए।
1: आपका भी हमारा बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी फिलहाल क्या चल रहा है?
1: बस जी, अभी खूबसूरत वादियों का मौसम का नजारा ले रहे हैं। जहाँ
0: अच्छा,
1: बड़ा खुशगवार जहाँ का वातावरण है, माहौल है, पालमपुर जैसे एक जन्नत है जहाँ।
0: ओके, क्या बात है। बर्फबारी होती है आपके वहाँ पे?
1: हम बर्फबारी ऊपर पहाड़ों पे होती है।
0: अच्छा
1: जी।
0: अच्छा पहाड़ों पे होती है। ओके,
1: तो नीचे मैदानों में कम होती है। वैसे मजा बहुत मिलता है क्योंकि ऊपर पहाड़ियों के जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो पहाड़ियों पे,
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी
1: दिखाई पड़ती है। और नीचे भी बड़ा खूबसूरत नजारा होता है, घुमावदार सड़कें और आसपास झरने बहते हैं, तो बड़ा मजा आता है।
0: क्या बात है जगदीश जी, आप तो सही में जन्नत में रह रहे हैं।
1: बिल्कुल सर जी,
0: जी
1: जन्नत ही है।
0: ओके, और अगर कोई पर्यटक वहाँ घूमने आए तो कौन कौन से जगह घूम सकते हैं?
1: हमारे जहाँ आसपास कहीं भी निकल जाएं, वैसे
0: अच्छा।
1: तो हमारे जो पालमपुर शहर ही एक ऐसा है, इसमें जो चाय के बागान हैं आसपास वो
0: ओके।
1: देखने लायक हैं, बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। ऊपर से नीचे को जैसे देखने में इतने सुंदर नजर आते हैं कि बस
0: जी
1: देखे जाएं उनको।
0: ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा।
1: थोड़ी थोड़ी दूर निकल जाएं तो आसपास के गांव भी जहां देखने लायक हैं, गांव भी ऐसे हैं,
0: अच्छा
1: सचमुच जन्नती हैं।
0: ओके। और गांव में खेती बाड़ी होती है?
1: हाँ, जहाँ बस ज्यादा तो जहाँ चाय की खेती होती है जी,
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी
1: और थोड़ी बहुत ही जहाँ ज्यादा कुछ थोड़ा सा मैदानी इलाका

0: जाए तो वहाँ गेहूं की खेती भी होती है।
1: ओके जी।
0: ज्यादा तो जहाँ चाय के बागानी है, क्योंकि ऐसा है ना, जहाँ का ढलाने हैं, ढलानों पर चाय बहुत अच्छी होती है।
1: ओके, और वहाँ का चाय कहाँ कहाँ जाता है?
0: चाय जहाँ का, जहाँ हिंदुस्तान के सभी शहरों में अक्सर जाता है,
1: अच्छा
0: क्योंकि थोड़ा सा चाय इस जगह का काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो थोड़ा सा
1: ओके
0: महंगा भी है,
1: अच्छा जी।
0: जाता सारे देश में है फिर भी।
1: ओके, कोई बात नहीं, अगर दाम कुछ ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो
0: हाँ,
1: क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए।
0: क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेहत के लिए
1: ओके
0: बहुत अच्छी क्वालिटी है।
1: ओके, तो चलिए मैं भी ढूंढता हूँ आपके वहाँ का, अगर चाय यहाँ पे मिलता है तो ज़रूर ट्राई करूँगा।
0: जरूर मिलेगा सर, जरूर
1: जी
0: मिलेगा, कहीं भी मिलेगा।
1: जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आपसे जगदीश गर्ग जी। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: सर आज गीत सुनेंगे, फिल्म है जी आज और कल, तो उसका गीत है रफी साहब जी की आवाज में, मैं उसकी दो लाइनें
1: जी जी
0: गुनगुना
1: जी
0: के बता दूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी।
0: जिवादियां जिसकी जाए बुला रही है तुम्हें, जिवादियां जिस जाए बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, जिवादियां जिस जाए बुला रही है तुम्हें।
1: क्या बात है क्या बात है, आपका इशारा मैं समझ गया, पालमपुर की खूबसूरत वादियाँ हमें ही बुला रही हैं, जरूर आएंगे।
0: बुला, बिल्कुल सर, बिल्कुल बुला
1: जी
0: रही हैं,
1: जी
0: और हम आपका बहुत स्वागत करेंगे अगर
1: जी
0: आप भी इधर आए, और कोई भी दोस्त श्रोता भी अगर आए तो।
1: ओके जी, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं जरूर आएंगे वे, हम यही उम्मीद
0: बिल्कुल
1: करते। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: मेरे मित्र हैं जी, गौतम राय भोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, जोगेश जांगड़े जी हैं, उदयलाल टेलर जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, और सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से भी हैं, और गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड से।
1: ओके, तो इन सभी दोस्तों के साथ आप सुनना चाहते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: जी सर,
1: तो जगदीश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: धन्यवाद सर,
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: भगवान सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: जी सर बढ़िया है सर। आकाशवाणी ईटानगर को हम हमेशा सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप पेश करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन सा स्टेशन सुनते हैं आप? कौन कौन सा केंद्र सुनते हैं?
1: स्टेशन तो हम करीबन 400 स्टेशन सुनते हैं, लेकिन हमें ईटानगर भी जब फोन इन कार्यक्रम होता है जब सुनते हैं।
0: ओके, क्या बात है, 400 से ज्यादा स्टेशन से।
1: और हर आकाशवाणी पर कॉल भी लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी।
1: और हमारा एक ग्रुप बना है हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप सर, उसमें भारत के हर राज्य के श्रोता जुड़े हुए हैं।
0: जी काफी श्रोता हमें कॉल करते हैं और बताते हैं इस ग्रुप के बारे में। सही है, जान करके
1: बताते हैं। माध्यम से ही उसमें डाटा आता है सर पूरा, कि कब कॉल लगाना है, कब उसका प्रसारण होता है, कौन से नंबर पे लगाना है सर, पूरा उसमें डाटा रहता है।
0: क्या बात है क्या बात है, ये सब काम तो एडमिन लोग ही करते होंगे।
1: जी जी सर। जी गौतम राय बोले सर हैं, वो ये काम अपने

0: बखूबी निभाते हैं, रोज लिस्ट डालते हैं, रोज बताते भी हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है, उनको हमारी ओर से सलाम और नमस्कार कहिएगा।
0: जी
1: जी जी, तो चलिए कहिए। हाँ जी,
0: हाँ सर, फिल्म का नाम बता देता हूँ आपको। फिल्म का नाम है जीत और गाने के बोल है बातों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है।
1: ओके जी, और किन लोगों के साथ?
0: दोस्तों के नाम, हाँ सर, कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे तो आपको
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूरा से है बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी, पूनम दीदी कानपुर से, विजयपुरम से है पूर्णिमा दीदी, और केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी और रमेश प्रजापति, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर।
1: ओके, तो भगवान सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, कैसे हो आप?
1: जी थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, और जब भी आप लोगों से बातचीत होती है और भी बढ़िया हो जाता हूँ।
1: जी मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, किसी आकाशवाणी में कॉल लगता है, किसी भी आदमी से बात होती है तो मैं और भी अच्छा हो जाता हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको
1: जी बताऊँ सर, बड़ा अच्छा आकाशवाणी में कॉल लगा के बात करना
0: जी।
1: इसमें अपनी पसंद का गाना सुनने के साथ में अपनी आवाज के साथ में जब बोल प्रसारित होता है ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। गाना सुनने तो क्या है कि हम YouTube पे सुन सकते हैं, मोबाइल पे सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन जब आकाशवाणी पे अपनी पसंद का गाना बजता है ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको बेहतरीन गाने सुनाते रहेंगे।
1: जी उसी साथ में सर आपको बताऊं, जैसे अभी मोबाइल ऐप से कार्यक्रम आने लगे हैं ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मतलब बिल्कुल श्रोताओं का, और मतलब पहले आकाशवाणी इतना लोग नहीं सुन पाते थे क्योंकि रेडियो पर प्रसारण नहीं मिल पाता था।
0: जी जी जी जी,
1: लेकिन जब मोबाइल ऐप पे जब शुरू हुआ ना तो काफी श्रोता बढ़ते
0: जी, काफी लोग सुनते हैं आजकल रेडियो ऐप के जरिए। जी बहुत ही अच्छा,
1: उसमें बड़ा फायदा हुआ, स्पष्ट प्रसारण मिलता है, हर राज्य का प्रसारण मिलता है, और कहीं पर भी जाओ तो कार्यक्रम सुनने को मिल ही जाता है।
0: जी जी जी, आप घर पर रहे या बाहर कहीं भी आप सुन सकते हैं। जी
1: पहले क्या होता था, जैसे ट्रांजिस्टर पे मिलता था ना प्रसारण, तो केवल घर पे ही सुन सकते थे, या कहीं बाहर जाए तो ट्रांजिस्टर को तो ले जाना असुविधाजनक होता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही है।
1: तो मतलब ये जो मोबाइल पर आने लगा है ना, तो ये समझिए कि आकाशवाणी का प्रचार नेटवर्क फिर से बढ़ चुका है।
0: जी
1: जी सर, एक बात और है, जैसे जो भी श्रोता आकाशवाणी से जुड़ चुके हैं ना, तो उनका तो मतलब आकाशवाणी का मतलब उन्होंने अपना परिवार ही समझ लिया है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल सर। और जब अनाउंसर से बात होती है ना, तो सर जी इतने अच्छे होते हैं, आप भी इतने अच्छे होते हैं, हम भी इतने अच्छे होते हैं।

0: जी
1: तो कार्यक्रम नहीं ही रोचकता सकता बढ़ जाती है।
0: जी, चार चांद लग जाता है जी प्रोग्राम
1: जी
0: में।
1: बिल्कुल सर।
0: जी तो
1: सर
0: बहुत ही
1: मैं
0: अच्छी
1: बताऊँ,
0: बात।
1: हमारे यहाँ पे मौसम थोड़ा अभी गर्मी बढ़ चुकी है और मतलब तापमान भी बड़ा है, मतलब गर्मी होने के साथ साथ में गर्म हवाएं भी चल रही है,
0: ओके।
1: परसों मतलब धूल भरी आंधियां भी चली थी।
0: ओहो जी जी जी जी
1: जी हाँ, बट है ना अच्छा लग रहा है फिर भी।
0: ओके। तो ऐसे मौसम में तो
1: जी
0: घर के
1: सर।
0: अंदर रहकर हमारा प्रोग्राम सुनते रहें, यही बेहतर होगा।
1: जी बिल्कुल सर। अपने वक्त की मुझे बातें करने का बड़ा शौक है और आकाशवाणी से मुझे जरिया
0: अच्छा,
1: मिला बातें करने का।
0: ओके, बहुत ही अच्छी बात है ये
1: जी
0: तो। इसी तरह से
1: और
0: हमसे जुड़ते
1: ईटानगर
0: रहिए
1: में,
0: और
1: जी
0: बातें
1: सर मैं
0: करते
1: बताऊँ
0: रहिए।
1: आपको, ईटानगर में हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनता हूँ मैं। हेलो फरमाइश हमारा एक ग्रुप बना हुआ है,
0: जी
1: हेलो फरमाइश एरिया एक्टर ग्रुप, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती।
0: तो चलिए, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, फिल्म का नाम सबसे बड़ा खिलाड़ी और गाने के बोले भोली वाली लड़की, खोले तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की।
0: जी, और किन
1: जी
0: लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी हमारा ग्रुप है हेलो फरमाइश एरिया एक्टर ग्रुप, उसके दोस्त है हमारे भगवान सिंह परमार, लोकेन्द्र वर्मा, तुकाराम जाधव, गौतम राय बोले, आशुतोष अविनाश, संगीता जी और कानपुर से भी पूनम जी।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को। तो
1: जी
0: प्रेम सिंह जी
1: बिल्कुल, रमेश
0: हमसे,
1: चंद्र भोपाल से हैं हमारे दोस्त और सुनील जा भोपाल से ही,
0: ओके, तो सुनाते
1: और
0: हैं आपको
1: कार्यक्रम
0: आपके।
1: आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा
0: हाँ जी,
1: सर।
0: हाँ जी, मैं तो जरूर सुनूंगा ही आप लोगों के साथ। जी
1: जी
0: तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात
0: ओके
1: करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार योगेश जांगड़े जी।
1: बिल्कुल सही पहचाने योगेश
0: जी,
1: जांगड़े
0: जी।
1: मैं तारा छत्तीसगढ़ से।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे नियमित श्रोता योगेश जांगड़े जी। और कहिए कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: ओके, मौसम तो गर्मी हो गया अभी तो।
1: बिल्कुल गर्मी है
0: जी जी। तो घर पर ही होंगे अभी?
1: हाँ घर से ही बात कर रहे हैं। और अभी जब से गर्मी लगा है, खेती बाड़ी का कार्य पूर्ण हुआ है, तब से ज्यादातर तो घर में ही रहना होता है।
0: ओके। और सुबह से अभी तक कितने रेडियो स्टेशन पे आपने कॉल किया?
1: ये मेरा 14वां फोन कॉल है आज का। और दिन
0: आज
1: भर
0: का
1: कम
0: क्या
1: कम से
0: बात,
1: कम 32 से 35 कॉल कर रहा है।
0: बाप रे बाप रे बाप रे जी। अगर
1: जी
0: बाहर जाना ना हो तो घर पर रहकर के कॉल करते रहें और गीत सुने,
1: बिल्कुल
0: जानकारी ले रेडियो से। जी जी
1: जी जी
0: हाँ जी। तो कहिए आज क्या गाना सुनना चाहेंगे, कौन सा फिल्म का?
1: तमाम साथियों को आप सुनवा देंगे फिल्म धड़कन से टाइटल सॉन्ग, तुम दिल की धड़कन में रहते
0: धड़कन
1: हो।
0: में रहते हो। जी जी बहुत ही प्यारा गीत है।
1: तमाम साथियों के साथ इस गाने में किसी को नहीं छोड़ेंगे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी
0: जी। तो योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं धड़कन फिल्म का गाना।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोट साइड डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे दोस्त राकेश जी।
1: जी।
0: और कहिए कैसे हो आप?
1: जी बहुत बढ़िया है। और आप नहीं है, आपका ईटानगर का कैसा मौसम?
0: जी हम तो बहुत ही बढ़िया, ईटानगर का मौसम भी बढ़िया है और शिमला का मौसम भी बहुत ही बढ़िया होगा।
1: जी शिमला का मौसम भी बढ़िया है और बारिश हो रही है। और
0: अच्छा
1: जी बारिश लगातार हो रही है हमारे यहाँ।
0: अच्छा, आप प्रॉपर शिमला से ही बोल रहे हैं या फिर कहीं?
1: नहीं, मैं प्रॉपर शिमला से हूँ, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, मैं हिमाचल का स्थानीय से हूँ और मैं सभी केंद्र के साथ आकाशवाणी ईटानगर।
0: अच्छा जी। और शिमला में अगर कोई आए तो कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं?
1: शिमला में अगर कोई जाए तो आप जक्कू, माल रोड, ये रिज मैदान, और क्या बोलते हैं रिज मैदान फोटो खींचने का, क्योंकि वो शूटिंग रेंज है वहाँ।
0: अच्छा।
1: होती है फिल्मों की रिज मैदान पे।
0: ओके जी।
1: और माल रोड आप घूम सकते हैं और चिड़ियाघर जो है होता है, और कुफरी आपने सुना होगा?
0: हाँ जी हाँ जी, सुना है।
1: हाँ, तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं। और अगर आपको सेब के जो पेड़ होते हैं वो देखने, तो हमारा क्षेत्र है, मेरा गांव तहसील का नाम है कोटखाई।
0: अच्छा, वहाँ पे सेब अच्छे होते
1: हैं, आप घूम सकते हैं। तो पूरा जो है शिमला काफी घूमने के लायक है।
0: ओके।
1: अगर आप आ सकते हैं शिमला, हिमाचल में पूरा शिमला घूम सकते हैं। कुल्लू मनाली तो आपने सुना होगा?
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सुना है ये सब जगह।
1: जी आप आ सकते हैं, शायद आप आए नहीं होंगे ना पहली बार।
0: हिमाचल प्रदेश में गया हूँ लेकिन बहुत सालों पहले, तो अभी तो काफी नजारा बदल गया होगा।
1: नहीं, अब तो नजारा तो शायद आप शिमला आएंगे पहली बार।
0: जी हाँ जी हाँ जी।
1: नहीं तो तब का और आपका बहुत फर्क है।
0: बहुत फर्क होगा। जी बात तो सही है।
1: जी
0: तो चलिए,
1: और आपका बहुत फर्क है।
0: ओके, तो कभी समय मिले तो जरूर आएंगे और देखेंगे कितना बदल गया है।
1: आएगा शिमला घूमने।
0: हाँ जी। और मौसम कौन सा ठीक रहता है वहाँ पे घूमने के लिए?
1: वहाँ का मौसम रहता है मई जून का, क्योंकि जुलाई में तो आप तक का खतरा रहता है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होती तो फिर नुकसान हो जाता है। तो फिर यहाँ तो जुलाई अगस्त में तो फिर घूमना अवॉइड करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर अक्टूबर में आना है तो अक्टूबर में जा सकते हैं, नवंबर में आ सकते हैं। अगर बर्फ देखने आना तो दिसंबर और जनवरी में आ सकते हैं।
0: ओके, क्या बात है जी, सभी लोग तो बर्फ ही देखना चाहते हैं क्योंकि
1: तो जनवरी अच्छा मौसम रहेगा बर्फ देखने के लिए।
0: अच्छा। जी राकेश जी, काफी अच्छी जानकारी दी आपने शिमला हिमाचल के बारे में। हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो इससे लाभ उठाकर जरूर घूमने आएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं।
1: बिल्कुल ईटानगर के माध्यम से अगर जानकारी सुन।
0: हाँ जी
1: तो जरूर घूमने आएंगे शिमला।
0: हाँ जी बिल्कुल। तो कहिए आज कौन सा फिल्म गीत आपको सुनाए?
1: आज मुझे फिल्म का नाम है मोहब्बत मूवी का गाना सुनाए, नई वाली मोहब्बत।
0: हाँ जी, गाने के बोल।
1: उसमें एक गाना है, दिल में इससे रहती है दिल की धड़कन कहती है।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: तो पूरन वर्मा जयपुर राजस्थान से हैं, और अमर बसमाचार्य हैं, और विमल बसमाचार्य हैं, अविनाश तेली हैं, भगवान सिंह परमार हैं, और मंगी लाल चंदेल हैं, और तमाम सुनने वाले टिपुदास हैं, तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, तो राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी।
1: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी, महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: बढ़िया। और मौसम?
1: मौसम तो धूप है सर, 45 डिग्री है।
0: 45 डिग्री? जी जी जी। तो ऐसे में तो बाहर निकलना मुश्किल होगा।
1: मुश्किल है।
0: जी, तो अच्छी बात ये होगी कि आप रेडियो सुने घर पे बैठे रहे।
1: बिल्कुल, रेडियो सुन रहे सर
0: जी। ओके,
1: सुन रहे रेडियो से। अगर काम रहा कुछ दस्ती वगैरह बन के बाहर जा रहे।
0: ओके। जी जी जी।
1: हाँ, और सर आ रहे सर।
0: ओके, बढ़िया बढ़िया।
1: घर वापस आ रहे, घर में 4 बजे तक हम बाहर नहीं करे।
0: अच्छा अच्छा, तो दिन भर तो आप काफी स्टेशन सुन सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि सर मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा अच्छा जी, क्या काम करते थे आप पहले?
1: मैं मंडी के ऑफिस में काम करता था।
0: ओके।
1: और 2024 में रिटायर हुआ।
0: अच्छा, 2024 को।
1: लगातार अब ये फोन में आप आ गया सर, ये आपके जरिए से पूरे देश भर के कार्यक्रम सुन सकते।
0: जी जी जी जी, बहुत ही सुविधा हो गया आजकल रेडियो सुनना।
1: सुविधा होगा सर।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: इसलिए आपसे हम जुड़ पाए सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़ते रहिए।
1: जी जी सर।
0: जी, हमारा कॉल आता है मंडे और थर्सडे को। थर्सडे को भी आप कॉल कर सकते हैं 11 बजे।
1: अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं।
0: ओके,
1: बहुत खास करके आलोक फरमाश के ये लोग सब लोग लगा रहे हैं आपको कॉल।
0: जी जी जी जी जी। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: आज सर मैं एक तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूँ सर।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी, हमारे खास दोस्त है गौतम जी राय बोले, तुकाराम जी जाधव जी, भगवान सिंह जी है, और उदयलाल टेलर जी है, दिलीप पाउजा है, और सुनील जा है, और सुरेश जाधव पैटन के है। अभी ये सभी दोस्तों को सुनना है सर, आपको भी सुनना है सर।
0: जी जी जी जी, मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ। तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ।
0: श्रीपाल जी, हरियाणा से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा का मौसम कैसा है?
1: सर, मौसम से काफी अभी जो गर्म है।
0: अच्छा,
1: तेज।
0: ओके,
1: कुछ दिन पहले मतलब बारिश हुई थी, ओले गिरे थे यहाँ पे।
0: अच्छा, बारिश और ओले।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी, जी, जी, हाँ जी। ओके, तो मौसम तो बदलता रहता है, कभी बारिश कभी ओला कभी धूप।
1: हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आज जो हमें गर्मी ज्यादा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप तो घर पर ही होंगे?
1: नहीं सर, अभी हम मतलब ड्यूटी पे डेली काम करते हैं, डेली अपडाउन करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, आपने बताया था पहले। ओके ओके,
1: पहली बात
0: आपसे। जी जी, तो श्रीपाल जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम कटी पतंग, गाना है जिस गली में तेरा घर ना हो।
0: ना हो बालमा जी,
1: जब मुकेश जी की आवाज में।
0: हाँ जी हाँ जी, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी, काफी दोस्त हमारे योगेश जी हैं, भूपेंद्र जी, गौतम जी हैं, दिलीप आहूजा जी।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं। तो श्रीपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: मैं दुमाल कालाहांडी उड़ीसा से मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ।
0: मनोज कुमार पटेल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप, बताइए।
1: हम तो ठीक ठाक है जी, और आप कैसे हैं
0: जी, हमें बहुत ही बढ़िया है, और आपसे बात होती है तो हमें और भी अच्छा लगता है, हम
1: जी?
0: और
1: जी
0: बढ़िया हो जाते हैं। जी जी
1: जी जी
0: और वहाँ
1: तो हमारा उड़ीसा में बारिश हुआ था।
0: अच्छा बारिश हो रही है अभी?
1: जी जी जी
0: ओ जी जी जी हमारे यहाँ भी।
1: बारिश बारिश लगातार चल रहा है जी, शाम को चल रहा है बारिश।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके। तो आप जहाँ रहते हैं वो पहाड़ी इलाका है या फिर मैदानी इलाका है आपका?
1: पहाड़ी इलाका है हमारा,
0: अच्छा
1: कालाहांडी पहाड़ी इलाका है।
0: अच्छा कालाहांडी में आप रहते हैं? ओके।
1: जी जी
0: ओ तो पहाड़ी इलाका में तो बारिश होती ही है
1: जी
0: जी।
1: जी
0: हमारे यहाँ पे भी कल रात

0: बारिश हुई थी, अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला है।
1: जी जी
0: ओके, तो बहुत ही बढ़िया मौसम में आप हैं, तो कहिए बढ़िया मौसम में कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सूर्या मूवीज का एक गाना है, प्यारी प्यार का है मनाया राम ने, कोई आया मेरा दिल थामने।
0: जी जरूर सुनाएंगे, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मेरा दोस्त है श्रीकांत जोशी और चित्रा सेन जी और मंगेलाल जी।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहेंगे?
1: जी आपको भी ये गाना डेडिकेट
0: जी
1: करना
0: जी जी मैं तो जरूर सुनूंगा ही आप सभी के साथ।
1: जी जी जी
0: तो मनोज जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे थे हेलो फरमाइश आकाशवाणी के अरेना एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए सुरों का सफर जारी रखते हैं हिंदी फिल्मी गानों के साथ, मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ।

0: रोमांचित संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आरजे नूरी के साथ आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने। चलिए संगीत का सफर जारी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा धुन बदल लेते हैं कुछ ही पलों में, यानी कि अभी अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। तो बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashwani Itanagar. This was your host, Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: तो दोस्तों अभी अभी हमने जिन वेस्टर्न मेलोडीज का सफर किया उनके बीच ने जरूर एक अलग सा जोश भर दिया होगा। दोस्तों कभी कभी ये इंटरनेशनल ट्यून्स हमें थिरकने पर मजबूर कर देते हैं और मन को एक नई एनर्जी से भर देते हैं। लेकिन दोस्तों संगीत का असली जादू तब होता है जब हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करता बल्कि हमारी यादों से भी जोड़ देता है। और अब इस एनर्जेटिक सफर से हम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं एक ऐसे दौर की ओर जहां सुरों में सादगी थी और गीतों में एहसास। तो चलिए वेस्टर्न मेलोडीज की दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए डूब जाते उन भूले बिसरे गीतों की मिठास में है जहां हर गीत एक कहानी कहता है और हर सुर दिल को छू जाता है। ये आकाशवाणी का रुनएफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और हम आज के सफर में सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और हम पेश कर रहे हैं भूले बिसरे गीत।

श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम में हेमंत कुमार गोल्डन कलेक्शन से कुछ हसीन नगमे। हेमंत कुमार एक ऐसा नाम जिसकी आवाज में सादगी भी है और गहराई भी। हेमंत कुमार की गायकी का जादू ऐसा है कि हर गीत सीधे दिल से होकर गुजरता है। दोस्तों, इनकी आवाज में एक ठहराव है, एक सुकून है जो हमें आज भी उस सुनहरे दौर में ले जाता है। और दोस्तों, अब जो नगमा आपके पास पहुंच रहा है वो एक ऐसी फिल्म है जिसने अपने दौर में सादगी और संगीत का अलग ही जादू बिखेरा था। फिल्म है बात एक रात की, और इस फिल्म का ये गीत आज भी उतना ही तरोताजा लगता है जितना कि उस समय में था। तो आइए दोस्तों, डूब जाइए इस पुराने सुनहरे दौर में जहां मोहब्बत भी धीरे धीरे

0: हेमंत कुमार गोल्डन कलेक्शन के इस सुरीली शाम में भूले बिसरे गीत में अब जो नगमा आने वाला है वो सच में जादू से कम नहीं। ये गीत हमें ले चलता है यादगार फिल्म की ओर, जिसमें सस्पेंस और मेलोडी का खूबसूरत मेल पेश किया। फिल्म है 20 साल बाद और इस फिल्म का ये अमर गीत, जिसमें मोहब्बत भी है और अनकहा सा एहसास भी, कभी कभी दिल की बातें कहने के लिए शब्दों की नहीं बस नजरों की जरूरत होती है। लीजिए पेश है अगला नगमा।
1: कातिल तुम्हें पुकारूं ये जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं, और जब उन रिश्तों को सुर मिलते हैं तो वो बन जाते हैं यादों का एक अनमोल हिस्सा। तो आइए दोस्तों, डूब जाइए उस मीठे एहसास में जहाँ प्यार उम्र से नहीं बल्कि दिल से मापा जाता है। सुनते हैं ये मधुर नगमा, उम्र हुई तुमसे मिले, बहुरानी फिल्म से।

श्रोता दोस्तों, आप आनंद उठा रहे हैं आकाशवाणी के रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और रन एफएम पर भूले बिसरे गीत। दोस्तों, कभी कभी दिल की बात कहने के लिए हिम्मत नहीं होती और बस एक बार फिर से वही बात सुनने की चाह रह जाती है, और यही एहसास इस गीत में बस गया है। ये खूबसूरत गीत हमें ले जाता है क्लासिक दौर की फिल्म की ओर। फिल्म है बिन बादल बरसात। तो आइए दोस्तों, डूब जाइए उस मासूम से मोहब्बत में जहां दिल बस इतना चाहता है फिर से सुनना, फिर से महसूस करना। सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा, एक बार जरा फिर से कह दो।

0: सकता हो ना?
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
2: किसी की जुदाई का ख्याल ही दिल को बेचैन कर देता है ना दोस्तों? और तब दिल बस यही कहता है, यू छोड़ कर मत जाइए। और इसी खूबसूरत एहसास को आवाज दी है हेमंत कुमार ने। तो आइए दोस्तों, महसूस कीजिए उस अमर गीत की मिठास और तड़प को। फिल्म 20 साल बाद से बेकरार करते हुए हमें यू न जाइए।
3: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक।

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही आज की ये सुरीली महफिल यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है भूले बिसरे गीत के ये नगमे आपके दिल के किसी कोने को जरूर छू गए होंगे। मैं हूं आपकी अपनी आरजे नूरी। और दोस्तों, प्रसारण अधिकारी एल ताली तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और स्टूडियो के सभी साथियों के तरफ से हम आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन ये सफर यही थमता नहीं है, सफर जारी रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के प्रसारित कार्यक्रमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम को, जहां होती है दिल से दिल की बात और आप तक पहुंचाते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और दिल की बातें तथा किस्से कहानियां। शुभरात्रि, जय हिंद।

0: modernization and global branding. Now, from there, we've also seen that we had the Startup India initiative, which sort of brought in the digital commerce platforms, including the ONDC, GEM, and all the other e-commerce marketplaces that democratized market access for small toy manufacturers. And I'd say another very important shift, which has been the integration of toys with India's education and skilling vision under the National Education Policy 2020, where we've all seen the emphasis on experiential learning, creativity, problem solving, indigenous knowledge systems, which have had increased demand, whether it was for educational, scientific, cultural, or do-it-yourself toys, which are manufactured in India. Overall, I feel under Prime Minister Modi's leadership, the toy industry is no longer just a consumer goods segment, but it has become a strategic sector, which is linked to manufacturing, culture, creativity, skilling, child development, and obviously exports. This is what I feel is a situation where India is standing at the threshold of not just being a large market for toys, but we are now also globally recognized for safe, innovative, culturally rooted, and high quality toy manufacturing led by micro and small enterprises.
1: Okay, that's quite an introduction as to what triggered the transformation. What were the key policy measures, Vinod, that made the imports fall by up to 52%, which is quite a massive drop? So what were the measures taken that made this happen?
0: Almost 6-7 years back, if you look at, we imported a large percentage of our toys, especially low-cost plastic and electronic toys and all that. And majority of our imports were largely dominated by Chinese manufacturing ecosystems. Whereas Indian toy manufacturers struggled to compete on pricing, scale, and so on and so forth. This was primarily linked to, I'd say, six things. So you had the mandatory BIS quality standards for toys that came in. We had the higher custom duties. We had stricter compliance and testing requirements for imported toys. And we also brought in the anti-dumping and quality control measures. Now, these four, along with the vocal for local push and Make in India push, which sort of saw enhanced manufacturing capacity locally for toys, and the consumer sentiment, which basically pushed against using imported toys, which was so easy, so cheap, and it was almost like majority of the toys were dumped into India.
1: Vinod, we also have with us at this point of time a toy maker, Chitari. He joins us from Maharashtra. Let's hear what he has to say about toy making and what transformation that has come into the toy industry. Chitari, aapka bahut swagat hai Money Talks mein.
2: Thank you, sir.
1: आप बताइए कि आपकी कहानी क्या है.
2: मेरा नाम अमित चितारी है. मैं सावंतवाड़ी से आर्टिजन करके हूँ और हम लोग एक मेरी ये फोर्थ जनरेशन है. अभी भी हम लोग वुडन टॉयज बना रहे हैं इधर सावंतवाड़ी में.
1: ओके.
2: स्पेशली हमारा जो टॉयज है वो गंजीफा आर्ट रिलेटेड है. गंजीफा ट्रेडिशनल आर्ट है, उससे जो कलर स्कीम है वो उसमें जुड़ी है.
1: ओके. तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ सालों से आपने क्या बदलाव देखा है टॉय इंडस्ट्री में आते हुए.
2: अभी लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो गया है. लोग फिर से वुडन टॉयज के बढ़ रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो मतलब जो लकड़ी का खिलौना है ना, उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग अभी.
1: ओके. और आपको क्या सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा हुआ है?
2: बिल्कुल फायदा हुआ है. उसकी वजह से हमने थोड़े हमारे वर्कशॉप में ऑटोमेशन मतलब सीएनसी मशीन वगैरह खरीद लिए है, तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारा.
1: और आप क्या सोचते हैं कि आजकल जो आपके ग्राहक हैं वो ज्यादा अवेयर हैं सस्टेनेबिलिटी के? वो जानते हैं कि प्लास्टिक से कितने लाभ नहीं मिलते हैं जितना लकड़ी के टॉयज से मिलते हैं, बच्चों के लिए वो ज्यादा सेफ हैं. क्यों आजकल ये अवेयरनेस आ गई है क्या लोगों के बीच में?
2: बिल्कुल सर, आ गई है. क्योंकि ज्यादा करके लोग है ना अपने बच्चों के तरफ से ज्यादा सेफली सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि लकड़ी का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता. और हम लोग जो लकड़ी यूज करते हैं वो स्पेशली जामुन की लकड़ी यूज करते हैं.
1: okay.
2: बच्चे के लिए तो जामुन की लकड़ी जो रहती है ना, अगर बच्चों ने ना मुंह में डाली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है.
1: तो आप क्या आपके ये जो टॉयज हैं ये भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं?
2: हाँ सर, होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते, हमारे से लेके दूसरे लोग करते हैं.
1: चितारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए.
2: Thank you, sir.
1: So, Vinod, coming back to you after listening to what Chitari said to us, that he's been in this business for the past 4 decades,

0: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: आशुतोष जी। जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था, दिसंबर में इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
1: गेम चेंजर सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी, लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि वो पूरा होगा।
0: जी, चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
0: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
1: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा, अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करते हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना

0: चल रही थी तो चल ही रहे थे। जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: और 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है। और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
0: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यहाँ जवाबदेही की गई है।
1: जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: परीक्षित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
0: 2-3 बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन के गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें, रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है।
1: जी, क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने भी
0: बिल्कुल
1: कि जी, बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
0: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है, अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे क्या है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे।

0: राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं, कि उन्हें रोजगार मिलेगा, तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा।
1: जी, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, FPOs हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी। और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए संरचनाएं जैसे रिटर्निंग बाल वगैरह, अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहां पानी भरता है, तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा, या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
0: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास, जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो। और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज इसके की प्राथमिकता में शामिल है, तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए, आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है, जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा। और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांव का देश है, बचपन से हम लोग यही पढ़ते भी रहे हैं। गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
0: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गाँव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही एक हिसाब होता है
1: जी,
0: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास, ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी।
1: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरीके की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी कि खासतौर पर जरूरत है ग्रामीण के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।

0: बिल्कुल यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे। 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन।

0: ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में देश से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। कल जयपुर से मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने

0: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच मुंबई शेयर बाजार में आज लगभग 2% की गिरावट आई। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा और श्वेतपर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 169 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Earlier, as per sources, the Rajasthan Police SOG arrested 5 persons from Dehradun, including the alleged mastermind, Sikar-based career counselor Rakesh Kumar, on the 7th of May. 4 NEET aspirants were also arrested the following day. Nashik police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, those who are involved in the alleged NEET UG paper leak incident will be nabbed and jailed. He said NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner. And no additional fee will be charged for the re-exam.
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है।
4: We have handed over this matter to the Central Bureau of Investigation for inquiry, and all those involved in such wrongdoing will be sent to jail, so that students' future are not adversely affected in any way. Along with this, we will conduct the examination again in a completely fair manner, with no irregularities of any kind, and no additional fee will be charged for the re-examination.
3: Fees नहीं चार्ज करेंगे।
2: The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. The government has also secured the backing of the lone MLA of Amma Makkal Munnetra Kazhagam, S. Kamaraj, who was expelled from his party today. Chief Minister Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties since yesterday to consolidate support ahead of

0: the floor test. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapada, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit there will be talks on energy security. In badminton, Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty began the Thailand Open 2026 tournament campaign with a hard-fought win in Bangkok today. Top seed Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Indonesia's unranked pair of Putra Inventsiah and Bagas Molana to enter the men's doubles second round. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी मुख्य समाचार भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुवार से करेगा इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्थानीय चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफे की मांग को खारिज किया कहा 20% सांसदों का आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हुआ इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला कानून पारित किया नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 20 घायल और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं नॉर्डिक समिट होने वाला है नॉर्वे की यात्रा है स्वीडन की यात्रा है इटली की यात्रा है नेदरलैंड्स की यात्रा है यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है इनोवेशन इको सिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती है
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक लक्षित और नपातुला जवाब था इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को

0: बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है और आज उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पहले सदस्य को खो दिया। आवास समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टार्मर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का आग्रह किया। उधर श्री स्टार्मर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टार्मर से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है कि श्री स्टार्मर का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर दिया है। खबरों के अनुसार विधेयक के पक्ष में 93 मत पड़े और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। एक रिपोर्ट।
3: ये कानून इसराइल की सैन्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इसराइल के सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए और तब से हिरासत में रखे गए लगभग 300 कथित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस कानून के तहत न्यायाधिकरण को नरसंहार, इसराइल की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने, युद्ध छेड़ने, युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने और आतंकवाद सहित विभिन्न आरोपों में आरोपियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को लगभग 5,000 से 6,000 फिलिस्तीनी आतंकवादी जमीन, समुद्र और हवाई मार्ग से इसराइल में प्रवेश कर गए और गाजा सीमा के पास कई स्थानों पर समन्वित हमले किए, जिनमें मुख्य रूप से हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के सदस्य शामिल थे। इन हमलों के परिणाम स्वरूप लगभग 1,200 लोगों की मौत हुई और 251 बंधकों का अपहरण किया गया, जिनमें से कई को गाजा ले जाया गया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हाकाबी ने कहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नजर से देखते रहे हैं और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत के अर्घाखंची जिले में आज एक यात्री बस दुर्घटना में 4 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार लगभग 30 यात्रियों को ले जा रही बस सुपा देवराली मंदिर की तीर्थ यात्रा के बाद पर्वत जिले लौट रही थी, तभी पाणिनी ग्रामीण नगर पालिका 8 के दुर्गाफांत कुड़ेले में वे सड़क से उतरकर लगभग 100 मीटर नीचे गिर गई। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 9 और मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार खसरे के पुष्ट मामलों और खसरे से संबंधित लक्षणों में मरने वालों की

0: संख्या अब बढ़कर 424 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में हुई मौतों में से 3 खसरे के पुष्ट मामले थे, जबकि 6 बच्चों की मौत खसरे जैसे लक्षणों के साथ हुई। हंता वायरस के प्रकोप से ग्रस्त जहाज से निकाले गए स्पेन के एक यात्री की इससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हंता वायरस से संक्रमित पाए गए यात्री को मैड्रिड के एक अन्य सैन्य अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र इरवियन सहा और बगास मौलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा और श्वेता पर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्थानीय चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफे की मांग को खारिज किया, कहा 20% सांसदों का आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला कानून पारित किया। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 20 घायल। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साईरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India to host 2-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. British Prime Minister Keir Starmer rejects resignation calls after local election setback, says required threshold of 20% MP not met. Israel's Knesset passes law creating military tribunal to prosecute October 7 attackers. In Nepal, 5 people killed and 20 injured after passenger bus crashed in Lumbini province. In badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to second round of Thailand Open in Bangkok. And now the news in detail. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Modi's visit to UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security.
2: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
1: Replying to question on reports regarding China's support to Pakistan during Operation Sindoor, Mr. Jaiswal said that these reports corroborate what was known earlier. He said that Operation Sindoor was a precise, targeted and calibrated response to the terrorist attacks in Pehelgam.
2: Operation Sindoor was a precise, targeted and major response to the terrorist attack that took place in Pehelgam. Its objective was to destroy those terrorist infrastructures that are not only sponsored by the Pakistani state, but also operate from Pakistan and under its directions. Now, it is for those nations that consider themselves responsible to introspect and reflect on whether supporting efforts to protect terrorist infrastructure affects their reputation and global credibility.
1: Speaking about India's relations with Nepal, Mr. Jaiswal said that both sides are now working